0: कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।

मोदी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज.
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बने कैसे? करते करते करते करते आदत बने। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम

0: एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की बात करते हैं तो खुशी का इंडेक्स भी बना लिया हमने। यहां हमने देखा कि हर रोज हमारी खुशी का जो लेवल है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तब इस पूरी श्रृंखला में हमने कोशिश की है कि ये बातें देखें जो हमारी जिस पर हमारी खुशी निर्भर कर रही थी। हमने देखा सिचुएशंस थे, लोग थे, लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि ना तो वो लोग या वो सिचुएशंस मुझे खुशी दे रही थी, ना चीजें मुझे खुशी दे पा रही थी, बल्कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको पिछली कड़ी याद हो, हमने बात की थी कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, वही बहुत सारी चीजें तय करती है। हमने पूरा की पूरी साइकिल देखी थी, उसी साइकिल को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अगर अपनी मेरी ओन क्रिएशन है तो वो कैसे संभव है कि मैं अपने उस इंडेक्स को स्टेबल रखता हूँ। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है

0: नाम हमारी सिस्टर शिवानी ओम शांति
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछले कड़ी को देखते हैं तो थॉट जो था वो एक डेस्टिनी तक लेकर जा रहा था। अगर हम इस पर पहले भी कई बार बात की है कि हमारे जो एक सोच है या हमारा संकल्प है वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। कई पड़ाव हमने बीच में से गुजरे थे, उसमें से डेस्टिनी तक अभी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मेरा भाग्य तय कर सकता है। एक छोटा सा रिकैप हम चाहेंगे कि आपसे ले लें कि किस तरह से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल रहा होता है।
1: जबकि सिचुएशंस हमारे सामने आते या लोगों का व्यवहार हमारे सामने आता या हमारे जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता तो हम उसका जिम्मेवार किसी न किसी और को ठहरा देते और फिर हम कहते मेरे भाग्य में ही ये है। जैसे ही मैंने ब्लेम किसी और पर रखा, सिचुएशन पर, व्यक्ति पर, अपने भाग्य पर या फिर परमात्मा पर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। ये मेरे साथ हो रहा है लेकिन इसका जिम्मेवार कोई और है। जब वो कोई और ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सो समवेयर वट एवर वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ, गुड और बैड, इट वॉज समवन एल्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो जब हम उस थॉट के साथ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं पे मेरे कंट्रोल में तो मेरा जीवन नहीं है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। तो अगर मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन सब कुछ अच्छा, पैकेज अच्छा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे सारा चीजें टाइम टू टाइम आ रही थी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वर फेवरेबल। जैसे ही सिचुएशंस में परिवर्तन आया तो मेरा वो इंडेक्स गिर गया। जैसे आज हम फाइनेंशियल इंडेक्स को भी देखें, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो इंडेक्स चेंज होता है। तो सारा दिन चेक क्या किया जाता है कि सिचुएशन सिनारियों में क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने खुशी के इंडेक्स पर भी उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया और हमने समझा ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल ही है कि जब बाहर सिचुएशन फेवरेबल
0: तभी मैं खुश,
1: बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे तो मैं अंदर डिस्टर्ब।
0: सुश्री शिवानी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था जब मुझे पता ही नहीं था कुछ और बात, जब मैं एक ही तरीके से जीना सीख रहा था कि सिचुएशन ठीक है, लोग ठीक हैं या कोई भी चीजें मेरे पास हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उन्हीं को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
1: एब्सोल्युटली। तो एक है उनको कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, और एक अपना ध्यान रखना। तो मैं रखना तो अपना ध्यान चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आज आस्क एनी वन एंड दे वॉन्ट वन थिंग, यू टेल देम वन थिंग जो आपको चाहिए, दे विल नॉट से गाड़ी बंगा, दे विल से हैप्पीनेस। लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि मेरी हैप्पीनेस इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो मैंने यहां ध्यान रखने की बजाय जहां वो क्रिएट होती है मैंने वहां ध्यान रखना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मैंने सोचा ये क्रिएट होती है। आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी, ये मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी। तो मेरा सारा एम ऑब्जेक्टिव क्या होने लगा, आप किस तरह से मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जिससे आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे। इट डजेंट मीन कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूं, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन ये है मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी, भले मैं कंफर्टेबल हूं अंदर वो करने से नहीं, पर मुझे वो करना है जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपको ठीक लगेगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। सो एवरीथिंग वॉज बींग डन फॉर हैप्पीनेस, विच वॉज ओके फॉर सम टाइम, इट सीम्ड टू बी गोइंग ओके। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस और लोगों में परिवर्तन की गति फास्ट होती गई तो समवेयर आई थॉट के दिस इज गोइंग टू फास्ट।
0: हाँ, वो मेरे बस में नहीं रहने लग गया।
1: तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहने लग गया एंड आई सॉ कि माई इंडेक्स वॉज क्रैशिंग एवरी डे। पर मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है तो खुशी तो कम होनी ही है। तब हमने स्वीकार कर लिया जीवन दर्द में जीना। आज मेजोरिटी, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हमने अपने दर्द को, दर्द इन एनी फॉर्म, दर्द कुड बी चिंता, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी स्ट्रेस, एंगर, व्हाटएवर, हम उसको स्वीकार करके उसको नेचुरल समझ के जीवन जीने लगे और हमने अपने आप को कहा ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे मन की स्थिति इन सब पर डिपेंडेंट है, ये सब ठीक नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने तक चाहिए थी खुशी,

0: स्वीकार कर लिया दर्द को और फिर दर्द में ही जीवन जीने लगे और फिर सारा दिन अपने आप से कहते रहे खुशी चाहिए खुशी चाहिए, जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना।
1: इनफैक्ट यहाँ एक बात अगर हम देखें, सब लोगों का जो पूरा व्यवहार है या जो जो जो कुछ भी हो रहा है, जब उन्होंने ये सोचा या हमने ये सोचा हुआ था कि इन पर डिपेंड कर रही है मेरी खुशी, तो मैं उन पर काम कर रही थी। See, I kept on working, yeah. and I'm still working.
0: Which is absolutely fine.
1: Yes,
0: but who
1: saying.
0: kept on working?
1: I.
0: But I in pain.
1: Ah, because I was looking for happiness.
0: Yes. So once I am in pain and I keep on working, whatever work I do, uska net result
1: pain will be.
0: तो ये जब हमने स्पिरिचुअलिटी ने सिर्फ इतना ही फोकस शिफ्ट किया, स्पिरिचुअलिटी हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को एक नई दिशा देती है, मेडिटेशन फिर उसको एम्पावर करता है कि उसको कैसे करना है। तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें ये नॉलेज दिया कि थॉट आपकी क्रिएशन है, फिर थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ओके दैट इज आफ्टर दैट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात thoughts मेरी creation है। Before this I was not even living in that awareness. I thought आपकी वजह से thought create हो रहा है, तो thought मेरी creation है या thought जो मैं create कर रहा हूँ वो आप पर dependent है। तो somewhere my thoughts were not in my control, my thoughts were in the control of,
1: in fact अभी भी अगर हम देखें, अगर हम careful नहीं रहते हैं तो कुछ भी होते ही वो thought create हो जाता है,
0: तो हम ध्यान
1: अवेयर नहीं है,
0: क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो spirituality एक बहुत बड़ा माइंडसेट को चेंज किया, वेरी बिग माइंडसेट, कि आज दिन तक आई वॉज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड नाउ आई टेक द कंट्रोल इन माई हैंड। अब ये हुआ कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, सिचुएशन आज फेवरेबल है, कल हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन माई स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल इन माई कंट्रोल। दिस वन थिंग जस्ट चेंजेस everything.
1: This actually feels very good. Again, I've come back to feeling. This thought creates very good feeling, you know, very strong feeling. But अभी भी हो नहीं पा रही है चीज़।
0: वो ऐसे, it's not magic, you know. जब आप एक mindset से सालों से चलते आ रहे हैं, this is the process which has to begin. हमें आज से ही सिर्फ एक ध्यान रखना है। Situations आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, व्यवहार सब कुछ करते करते करते जैसे सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि यहाँ जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट। जस्ट ऑब्जर्व वन डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, उसको चेंज भी नहीं करने की कोशिश करो। वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है, लेकिन पहली चीज तो ये अवेयरनेस चाहिए कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्रिएट कौन कर रहा है। क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग द थॉट। जस्ट नाउ my job is in, you know, at stake, yeah, my salary packages, yeah, my boss is shouting at me, everything is happening around me, lekin jo main thoughts create kar rahi hu, I just have to watch, ye fir bhi main hi create kar rahi hu.
1: Wohi main keh rahi hu ki jo feeling itni strong ho chuki hai, jaise suppose mere boss ne shout kiya mujhe, mujh pe shout kiya, bahut strongly shout kiya, matlab jo bhi sabke samne, the feeling of, you know, betrayal, feeling of being hurt, फीलिंग ऑफ फील, यू नो कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ, वो जो वो फीलिंग है उससे वो थॉट क्रिएट होता गया।
0: नहीं नहीं नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि सबके सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था फिर भी मुझे इस तरह से डांटा, दीज आर थॉट्स विच आई, अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था, सबके सामने मुझे डांट दिया, यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी। पहली बात, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी इस तरह से, यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं। दिस इज माई थॉट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट। बॉस अभी वही है, ही हैज डन वॉट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया। उस सीन को देखकर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील।
1: बट एक मिनट,
0: जो आपने अभी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर थॉट्स। ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड। फीलिंग कैटेगोरिकल नहीं होती है, ये आपने कैटेगराइज किया था अभी, बिट्रे किया, इंसल्ट किया, मैं हर्ट हो गई, यू नो, ये फील, ये सारा कुछ थॉट्स है। वी काइंड ऑफ टेंड टू मिक्स अप बिटवीन द टू ऑफ देम कि ये थॉट है या फीलिंग है। थॉट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जिस तरह की, जिस क्वालिटी की आप थॉट क्रिएट करोगे

0: फिर यू विल ईदर फील गुड और यू विल फील बैड. फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, थॉट्स आर स्ट्रक्चर्ड. फीलिंग्स में बहुत सारे ऐसे
1: फीलिंग्स,
0: आपको ऐसे फीलिंग्स अलग अलग नहीं आएगी. ये इंसल्ट की फीलिंग है, ये बिट्रेयल की फीलिंग है, ये हर्ट. इट्स ओनली फीलिंग लो और इट्स फीलिंग गुड. गुड एंड दिस लो एंड हाई विल डिपेंड ऑन ये जो स्ट्रक्चर्ड थॉट्स आपने क्रिएट किया. अब उसी सिनारियो में आप कोई और क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करो कि मैंने जो किया, फर्स्ट आई चेक माई वर्क कि वो सिंसियर था या नहीं. हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं परसीव किया, या हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है. जब उनका मूड ठीक हो जाएगा मैं जाकर बात कर लूंगी. हाँ, उन्होंने सबके सामने मेरे को डांट दिया, लेकिन अब मैं कैसे स्टेबल रहूं. सी वन थिंग व्हाट हैपेंस इज उन्होंने डांट दिया, देन आई फील लो. उसके बाद मैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ. एंड जस्ट वो जो पूरे चार लोग साथ में बैठे होंगे, उनके सामने अपना इमेज वो करने के लिए मैं उनके बारे में जाकर उन सारे लोगों, तो एक्चुअली इंसल्ट वो नहीं करते हैं मेरी. जब एक सिनारियो में आप आपको देखो कि किसी ने मुझे डांटा, मेरी कोई इंसल्ट नहीं होती है उस समय. आई थिंक कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है उस समय. जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं उस सीन को, उनको भी पता है हु इज द वन हु इज इन कंट्रोल एंड हु इज द वन हु हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. तो वो किसके बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं वो उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड होगा. आई फील इंसल्टेड माई सेल्फ, आई फील लो कि मुझे वॉट दे फील आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. मैं सोचती हूँ कि सबके सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. सब लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी. और अगर मैं स्टेबल रही, माई फेस डजेंट शो एनी डिस्टर्बेंस, आई डोंट क्रिटिसाइज हिम, my body language is absolutely smooth, you will see everyone there is smooth. Lekin main upar niche ho gayi, disturb ho gayi, main unke bare mein galat bolne lagi, phir wo mere bare mein ab sochenge. To ye meri jo soch bahut fast chalti hai us time jab ye scenario create hota hai. Unhone daanta wo mere control mein nahi hai totally, lekin ab kya kya hona hai uske baad wo sara kiske control mein hai. Wo sara mere control mein
1: hai. फीलिंग लाइक आपने बोला कि क्रिएट थॉट्स, जब उन्होंने डांटा ठीक है, तो उसमें लो फील नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबल रह पाते हैं तो बाकी लोग जो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे. यू नो
0: मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी. लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी. एक्चुअली आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मेस अप विद आवर लाइफ
1: बिकॉज़
0: लोग क्या सोचेंगे. कई बार कोई दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो लोग क्या सोचेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट. मैं किस चीज से गुजरता हूँ वो मेरी सोच पर डिपेंड करता है. अगर इफ आई एम फीलिंग लो टूडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो. आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है लोग क्या सोचेंगे. लोग क्या सोचेंगे आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स. मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ,
1: लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे.
0: एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे. जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी. पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचू ना. आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे, How does that matter? That doesn't build my self-esteem. लेकिन मेरे लिए क्यों ज्यादा important है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की सोच पर dependent है. That is what I thought. कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे तो फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे, फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे तो मुझे खुशी होगी. तो मैंने ज्यादा ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे. जब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या सोचूंगी उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है, तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ. डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है. बॉस ने मुझे डांटा ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है. अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं. मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है. इन्होंने तो फिर भी डांटना, माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ बिना बात के. इतनी मेहनत करो फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है ना. दिस इज द क्वालिटी.

0: निकल आएगी। अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ। व्हेन आई एम हर्ट कैन आई लाइक द बॉस? आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन। तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई, मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई? आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट। काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़े,
1: लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन।
0: यस, सो आई क्रिएट द थॉट विच दिस क्रिएट्स फॉर मी। द सेम थिंग व्हाट आई कुड डू इज कि डांट पड़ी है, वट एवर रीजन जिसके लिए उन्होंने डांटा, आई हैव टू स्टिल गो बैक टू माई वर्क। इट मे नॉट बी वेरी इजी दैट टाइम, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो आई हैव गॉट इन टू द हैबिट ऑफ वो डिजेक्टेड थॉट्स को फील करना। इफ आई कैन, इट्स नॉट ईगो, बट इफ आई कैन गो बैक टू माई डेस्क एंड से ओके लेट मी गेट बैक टू द वर्क ऑल ओवर अगेन। पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी इम्पोर्टेंट कि आई गो बैक विद फोकस, एंड अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, आई स्टिल गो बैक, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ, लेट्स सी अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं। बट आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू दोज नेगेटिव थॉट्स उस टाइम, और फिर उस स्टेबिलिटी से अगर मैं काम करूँ, अगर मैं हर्ट नहीं हूं तो मैं वो सीनियर के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूंगी। आई कैन से आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ। तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेज रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेज कब रख सकेंगे? जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है।
1: अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊं कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावनाएं,
0: शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है। यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना। शुभ भावना सिर्फ ये है कि आप स्टेबल हैं,
1: मैं
0: तो एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट विल बी स्टेबिलिटी ना। मौसम बदला फिर बदला, लेकिन मैं उस मौसम को क्रॉस कर सकी, दैट इज स्टेबल। कि वो बदला लेकिन आई वॉज स्ट्रांग इनफ चेंज करने की। इसी तरह वो बदले, उनका व्यवहार बदला, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। इट इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई कैन ट्राई इट आउट।
1: मैं उनके साथ उसी एनर्जी के साथ दोबारा बात करूं।
0: इट्स ओनली वन थॉट अवे। इट्स जितना ये हमें मुश्किल लग रहा है करना, एक्चुअली ये एक थॉट अवे है। अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहें, हम सालों साल नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है। क्यों मैं बात करूं? बात करना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन है मैं क्यों बात करूं आपसे? जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की तो मैं आपसे क्यों अच्छी, दैट इज द क्वेश्चन।
1: दैट्स व्हाट आई से ना, व्हेन वी से आई रिमेन अनअफेक्टेड, इज इट आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड,
0: दैट इज नॉट अनअफेक्टेड, दैट इज डीप हर्ट। दैट इज डीप हर्ट, दैट इज नॉट अनअफेक्टेड। जो आप कह रहे हैं कि कैन आई, मेनी पीपल हैव ट्राइड दिस, कि कैन आई गो बैक एंड टॉक टू दैट पर्सन नॉर्मली, इट इज वेरी वेरी वेरी इजी। कितने दिन के बाद करना है?
1: वेरी इजी यू सेड,
0: आई
1: वाज गोइंग टू से वेरी डिफिकल्ट।
0: बात करना बहुत इजी है, वो जो पीरियड बीच में है जब तक के लिए आप अपने आप को कन्विंस कर सको कि इट इज ओके, आई कैन गो बैक। सी इफ यू हैव सेड समथिंग टू मी जिससे आई एम लाइक टोटली वेरी वेरी लो, एंड आई कैन कीप सेइंग टू माई सेल्फ, इनसे तो अब मैं फिर से कभी बात नहीं करूंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आई गिव दोज थॉट्स टू माई सेल्फ। इट्स नॉट कि मैं इनसे बात कर नहीं सकती, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं करूंगी,
1: आई डोंट फील लाइक,
0: यस मैं नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया कि मैं नहीं करूंगी। तो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिसीजन लेना कि मुझे करना है या नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं करना, मैं बॉस से बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। विच इज ओके, दे आर ओके विद देयर नॉर्मल लाइफ। मैं जितनी देर नहीं करती तो इट इज दैट क्वालिटी ऑफ थॉट जो मेरे अंदर फिर चलती जाती है। जिस दिन आपने डिसीजन लिया, हमारे पास एक भाई आया, उसने कहा मैंने कई सालों से अपनी मदर से बात नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि वो मदर ने पता नहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दिया। आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, माई मदर इज इन अ लॉट ऑफ पेन, ही सेड, माई वाइफ इज इन अ लॉट ऑफ पेन। आई सेड आज प्रोग्राम के बाद वाई डोंट यू ट्राई, आप जाके अपनी मदर से बात कर लो। ही सेइंग नो, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत मेरे

0: साथ किया। ऐसे दो ही तो चॉइस है, या तो फिर इसी तरह हम दर्द में चलते रहें, या फिर आप जाओ, आप बात कर लो। एंड ही वेंट आफ्टर द प्रोग्राम एंड ही स्पोक टू हिज मदर। हाउ डिफिकल्ट कुड दैट हैव बीन, हाउ डिफिकल्ट।
1: लेकिन अगेन आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो,
0: सी दैट
1: फियर
0: कि आप मुझे फिर से,
1: मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, वल्नरेबल कर रहा हूँ एक बार फिर।
0: दैट इज द प्रॉब्लम कि जब हम इस तरह से कोई स्टेप लेते हैं, हम सोचते हैं हम वल्नरेबल हो रहे हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। किसी ने मेरे साथ कुछ किया ऊपर नीचे और मैं फिर भी उनके साथ स्टेबिलिटी से बात कर सकूं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है?
1: दिस इज माई स्ट्रेंथ,
0: दैट्स ऑल। What the, nobody can exploit strength. My strength and my weaknesses are my property. आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि हमें exploit किया जाएगा, कोई हमें exploit नहीं कर सकता। If my life, my state of mind is in my control, मैं अगर जाकर बात करती हूँ उस सीनियर से या जिसे से भी, तो वो अगर मुझे अच्छा लगता है, that's just more than enough. That's more than enough. उसका गलत क्या हो सकता है रिजल्ट? आज दिन तक मैं दर्द में चल रही थी, अगेन डिफरेंट डेस्टिनी नो। सी दिस ब्रदर, इतने साल से अपनी मदर से बात नहीं की, या इतने टाइम से आप अपने बॉस के अगेंस्ट होकर रोज वही ऑफिस में जा रहे हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके जीवन की क्वालिटी क्या है? और फिर इतना दर्द जो अपने अंदर भरा, इतनी बिटरनेस उस सीनियर के प्रति, वो सिर्फ उधर तक तो नहीं रहेगी, घर जाएंगे, वाइफ पर निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलेगा। आप अपनी जीवन की क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। इट इज ओनली स्टार्टिंग विद योर थॉट्स। आज आप जाएं, वाइप आउट करें अगर अपने आप को, और कहें आई एम जस्ट गोइंग टू बी नॉर्मल, इनको जैसे बात करना है इनको बात करने दो, तो आप फॉरगिव किसको कर रहे हैं? अपने आप को दर्द से आप मुक्त कर रहे हैं। उनको नहीं कर सकते, उन्होंने गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है, लेकिन अगर मैंने ये अपने आप को कह दिया कि मैंने फिर भी नॉर्मल रहना, तो किसको बचाया?
1: अपने आप को।
0: अपने आप को बचाया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचाया। जब घर जाओगे आज शाम को तो कैसे होगे? जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टुडे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, आई एम गोइंग टू बी नॉर्मल। लेकिन फिर वो और डांटेंगे, डांटने दो ना फिर, और डांटेंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम नाराजगी शो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक से बात करेंगे तो उनका तो व्यवहार, तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मैं नाराजगी शो करूंगी ताकि आप चेंज हो
1: जाओ।
0: लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू चेंज।
1: पीपल डोंट चेंज
0: पीपल, एंड पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन जर्नी। इसी में ये बात आई कि अपने ऊपर ध्यान रखना। इसलिए हमने कहा अपने ऊपर ध्यान रखना। डेस्टिनी डजंट नेसेसरीली मीन जॉब एंड मैरिज एंड प्रॉपर। डेस्टिनी मीन्स हाउ आई फील द होल डे इज माई डेस्टिनी, वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सफरिंग, दिस इज माई डेस्टिनी द होल डे।
1: शिवानी, आज जो हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि कुछ क्षण बैठकर उस पर रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो जो डिसीजन हमने लेना है जिस भी डायरेक्शन में जाने का, उसकी स्ट्रेंथ हमें मिल पाए।
0: श्योर। आई थिंक हर मॉर्निंग जैसे हम तैयार होते घर से बाहर जाने के लिए, तो जैसे कि हम शरीर की तैयारी करते, गाड़ी की तैयारी करते, सब चीजों की तैयारी करते, इस तरह से मन को तैयार करके निकले आज के दिन के लिए। और अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, और इसको अगर सभी लोग हर रोज करें, दो मिनट तीन मिनट भी निकाल कर अपने मन की तैयारी करें, रेडी फॉर द डे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेट्स जस्ट सिट बैक कंफर्टेबली एंड अपने थॉट्स को देखने का प्रयास करें। मैं वो शक्ति जो सारा दिन घर का, ऑफिस का, लोगों का ध्यान रखती हूं, मैं वो शक्ति जो इतने सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हूं, मेरी क्वालिटी क्या है? अपने आप को याद दिलाएं, I am that powerful being, master of the situation, master of the state of mind. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिएशन है। Today, as I set out for the day, let me just remind myself.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जिंदगी में हमने बहुत कुछ पाया, कई रास्तों से हम गुजरे हैं और इस पूरे सफर में हमने हंसते खेलते बहुत कुछ देख भी लिया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अंदर एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, कुछ कमी रह गई है और उसी कमी को तलाशने की कोशिश हमारी श्रृंखला में है कि वो खालीपन क्या है। क्या हमारी लो सेल्फ एस्टीम है? कहीं लगता है कि हम कम रह गए हैं? यही सारी बातें हैं जिन्हें आज हम तलाशेंगे अपनी इस कड़ी में, और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति सिस्टर शिवानी। बहुत कुछ हम बातें कर चुके हैं, ईगो को भी पहचान लिया था, सेल्फ अवेयरनेस की भी बात हमने कर ली थी, लेकिन अगर हम देखें तो कई बार लगता है कि कुछ नहीं है, खाली है, हम बहुत कहीं कुछ नजर नहीं आता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, लगता है कि मुझमें ही शायद अच्छा नहीं है। क्यों होता है ऐसा सब कुछ?
1: एक एम्प्टीनेस सा भी आ जाता है, जिसको होलोनेस कहते हैं, कि बहुत खालीपन है। बाहर रीति से देखा जाए तो सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जॉब, सैलरी, शरीर ठीक ठाक है, सब कुछ होते हुए भी वो जो इनर कंटेंटमेंट कहें या भरपूरता कहें, उसकी शायद कभी कभी कमी महसूस होती है।

0: कई बार एक्चुअली क्योंकि ये कई एक पूरा जो सफर है ये एक एज तक हमें कवर करते हैं, उसके बाद जब हम पहुंचते हैं इस पे कि एम्प्टीनेस का एहसास हो तो उसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कह देते हैं।
1: right.
0: बहुत बार ये नाम दिया जाता है, कई सारे और बातें की
1: वो इसलिए एक्चुअली ये नहीं है कि उस टाइम पे जाकर वो हुआ, लेकिन उस टाइम पर रुके उसको देखने के लिए।
0: हाँ
1: अभी तक बहुत फास्ट थे, हमने रुक कर एम्प्टीनेस था लेकिन एम्प्टी को भी चला रहे थे, यू नो जैसे शरीर थोड़ा बीमार होता है तो चला रहे होते हैं उसको, फिर भी चला रहे, लेकिन कहीं जाके फिर वो थोड़ा सा रुकने लगता है, काम नहीं कर पाता, तब जाके लगता है नाउ आई नीड समथिंग, नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड चेक एंड सी व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए वो 35-40 के बाद जाकर कहीं टाइम मिलता है रुक करके चेक करने के लिए, बट देन इट्स रियली नथिंग टू डू विद एज, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और एक होता है ना धीरे धीरे धीरे वो बिल्डअप होता गया, तो जब एक वो लेवल पर पहुंच जाता है तब जाके भी एक रियलाइजेशन होती है, बचपन में पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं।
0: एक्चुअली वही जो खालीपन की हम बात करते हैं उसे भरने के लिए हम कई तरीके करते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी हम फिल्म देखने चले जाएंगे, कई हम कभी हम शॉपिंग, अगर वुमेन की बात करते हैं तो वो शॉपिंग पे चली जाएंगे, लेकिन समवेयर डीप वो जो खालीपन था एक वक्त ऐसा आता है कि कोई भी चीज मायने नहीं रखती,
1: राइट,
0: तब फिर तलाश शुरू।
1: सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें तो सेल्फ एस्टीम आखिर क्या है, बिकॉज इट्स अ वर्ड विच इज कैचिंग ऑन, यू नो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, आपके पास बहुत सारी आज किताबें हैं इस टाइटल को लेके सेल्फ एस्टीम, लेकिन सही मायने में, और उसकी बहुत हाई डेफिनेशंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी एक्सप्लेनेशंस, लेकिन बहुत सिंपल रूप में अगर हम उसको एकदम सिंप्लीफाइड रूप में लें तो सेल्फ एस्टीम क्या है, इट्स सिंपली पुट हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ एट एनी पर्टिकुलर टाइम,
0: इस वक्त मैं अपने बारे में क्या महसूस
1: क्या महसूस कर रही हूँ, दैट सेल्फ एस्टीम और कुछ भी नहीं है, अपने बारे में मैं क्या फील करती हूँ, डू आई द फील गुड फैक्टर,
0: मैं बार आप लो फील करने लगते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी ये कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी लो, सो मतलब कोई वजह नहीं है कि वो लो फील क्यों हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: बट इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली,
1: इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज हम लो ही फील कर रहे हैं, और जितना लो फील कर रहे हैं उतना उसको बाहर से फिर कुछ ना कुछ करके, मतलब हम अंदर भरने की जगह उसको बाहर फिर एक प्रोजेक्शन के रूप में दिखाते
0: हैं। और सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों में जो आ रही है, बच्चों इन द सेंस की टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, इनफैक्ट हमारे पास एक मेल है, इसको पहले हम ले लेते हैं कि ये हमें आया है नागपुर से, और ये एक मदर है जो कहना चाह रही है कि उनकी बेटी 14 साल की है, शी इज बिकॉज वो प्यूबर्टी में है, उनको शी इज प्लम्प, और वो इतनी लो सेल्फ एस्टीम उसकी हो गई है कि वो ना बाहर निकलना चाहती है, वो अच्छी खेलती, ये लिख रही है कि वो अच्छी भली थी, खेलती थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि उसने वेट इतना पुट ऑन कर लिया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, तो वो अब ना बाहर जाती है, ना किसी पार्टी में जाती है, ना किसी यू नो फैमिली फंक्शन में जाती है, किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, चुप हो गई है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा इतनी बात करने के बावजूद भी कि वो कैसे निकलेगी,
1: राइट,
0: इट्स अगेन यू नो
1: लाइक वेरी कॉमन थिंग,
0: हाँ, लो सेल्फ एस्टीम और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर पड़ता है चारों तरफ,
1: बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे ये लो फीलिंग का है, इस तरह से खालीपन का है, क्योंकि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं इसको हमने बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड कर दिया कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ टूडे इज बेस्ड अ लॉट ऑन हाउ आई लुक, माई लुक्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टूडे इन जनरल,
0: लेकिन वो तो जनरली है, मतलब जनरली जो सब लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, इनफैक्ट आज के दौर में अगर हम देखें तो एज नो बार हो गया है, यू नो लाइक पहले ये होता था कि चलिए 40-45 तक आते आते लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब तो हम मोटे भी हो जाएंगे या ठीक है हम बूढ़े लगने लग गए,
1: अब तो लेकिन वो भी नहीं है,
0: अब तो दे हैव बिकम सो कॉन्शियस, मतलब हेल्थ को लेके हेल्थ क्लब्स चल रहे हैं, वेट लॉस का पूरा, ब्यूटी कॉस्मेटिक सर्जरी, इतना कुछ हो गया है, अब तो और ज्यादा अवेयरनेस हो गई,
1: तो हेल्थ कॉन्शियस इज ओके, दैट्स वन पार्ट, क्योंकि वो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन जहां तक एक मतलब नीट एंड क्लीन दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट बिकॉज हाउ आई लुक बट हाउ आई फील, आई शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी, बट हाउ आई फील, मैं अपने बारे में कैसा महसूस करती हूँ, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक, क्योंकि लुक्स जो है आज शरीर कैसा है दिखने में वो

0: टेम्पररी चीज है ना, आज अभी है कल नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पांव कट गया, तो क्या करेंगे? आई विल बी एब्सोल्यूटली शैटर्ड, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. आज ठीक है, 40-45 के बाद क्या? इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटिफुल एंड विच इज गुड. यू नो, किसी से भी आप पूछिए, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने आप को, से आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल. लेकिन जब वो आए समझ में आ जाएगा, तो वो लुक ब्यूटिफुल, सुंदर लगने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, शरीर को क्या से क्या बनाने की कोशिश कर देते हैं. कई बार तो असली चेहरा बिल्कुल छुप जाता है उसके पीछे. आज मतलब शरीर के एक एक अंग की हम सर्जरी करवा सकते हैं, सो दैट इट इज परफेक्ट. वी वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. ये एक मतलब एक हमने एक मान्यता, एक बिलीफ बना लिया है कि व्हेन आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट आई विल फील गुड. बट देन व्हेन आई अंडरस्टैंड द आई के हु एम आई, इज दैट आई ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. अभी जो हम कर रहे हैं वो हम अपने शरीर को ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट बना रहे हैं,
1: क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे थे कि आई इज दिस बॉडी.
0: दिस बॉडी, बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि नहीं कि ये शरीर ब्यूटिफुल और परफेक्ट, बट इट इज आई, मैं जो हूं, मैं ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट हूं कि नहीं.
1: बट सोल तो इज लाइक वी ऑलवेज से इज ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट.
0: सो नाउ वी नो दैट इज ऑलवेज ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. सो तो जब ये समझ में आ गया, जैसे आपने कहा कि लेकिन मैं तो हुई हूँ ऐसी, अभी राइट नाउ इट्स अ रियलाइजेशन कि मैं तो ऑलरेडी ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट हूँ, तो फिर इतनी मेहनत किस लिए, क्या करना है? नाउ इट्स इम्पोर्टेंट आई अंडरस्टैंड कि आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट, आई द सोल एम ब्यूटिफुल एम परफेक्ट. तो फिर ये सारी मेहनत किस लिए हो रही है कि नाक को इधर से
1: बिल्कुल. अच्छा, ये हम ब्यूटी की बात के साथ साथ एक और आई वुड लाइक टू टेक अ मेल एक्चुअली, जो एक मदर का है, एंड अगेन मदर्स एक्चुअली
0: फॉर दैट गर्ल ऑल्सो जिसका हमारे पास वो आया, इट्स इन हर केस शी हैज विथड्रॉन हर सेल्फ फ्रॉम पीपल, इट्स बिकॉज शी फील्स के आई एम नॉट लुकिंग गुड. तो वो उन्हें अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शी नीड्स टू वर्क ऑन हर बॉडी, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट नॉट कि वो दिखने में कैसे, लेकिन वो एक किस तरह की एक कॉन्शियस जो एनर्जी है उसकी क्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. शी कैन बी नाइस, शी कैन बी हैप्पी, शी कैन बी यू नो लवली विद पीपल, शी कैन गिव लव एंड पीस टू एवरीबडी. तो इट्स नॉट अबाउट फैट और थिन.
1: ये आई वो आस्क यू समथिंग एसएसए शिवानी, कि देखा ये गया है कि जो अपरेंटली खूबसूरत नहीं है, जो गोरा नहीं है, खासकर अगर हम भारत में देखते हैं, या जो यू नो स्मार्ट नहीं है,
0: पतला नहीं,
1: हाँ,
0: है,
1: पतला नहीं है,
0: you know,
1: नहीं,
0: हमने
1: हाँ,
0: ये जो बिलीफ बना दिया
1: तो
0: है,
1: उन्हें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ज्यादा अच्छा बन के रहना है. सी आपने भी तो यही कहा अभी कि आप लोगों के साथ अच्छे रहिए, आप लोगों के साथ ठीक व्यवहार कीजिए, आप अपने अंदर कोई और टैलेंट, इसका मतलब कोई और इन द सेंस है, क्योंकि पीयर प्रेशर है पूरा समाज में, ये एक्सेप्टेड है कि अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आप पतली हैं, अगर आप यू नो स्मार्ट हैं, तो ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है.
0: नहीं, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं. आप ये पहचानिए कि आपकी जो विशेषता है वो आंतरिक है, वो इंटरनल है, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी वर्च्यू है. और जब आप वो सुंदरता को पहचान लेंगे, तो लोग आपके शरीर को देखकर आपके नजदीक या आपसे दूर नहीं होंगे. अभी हम क्या फील करते हैं कि जितना दिखने में हम अच्छे होंगे तो लोग हमारी तरफ आएंगे, हमारे दोस्त.
1: लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं?
0: नहीं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है. आप देखिए, आप 5 मिनट किसी से बात करेंगे, पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो शायद आप उनके बाह्य स्वरूप को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, एंड आप फर्स्ट टाइम उनसे बात करना चाहते हैं. 10 मिनट उनसे बात करने के बाद अब फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट लुक कितना ज्यादा मायने रखता है उसके बाद. अब ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है
1: कि वो है,
0: वो है कैसा, वो बोलता कैसे, प्यार से बोलता है मेरे साथ, वो व्यवहार में वो मधुरता है. अब मैं क्या करूं वो सुंदर शरीर को, दैट वॉज जस्ट अ फर्स्ट अट्रैक्शन. लेकिन एक रिलेशनशिप या किसी का आपको स्वीकार करना, आपको रिस्पेक्ट देना, वो बहुत ज्यादा बाह्य लुक्स पर नहीं हो सकता है. इनफैक्ट इस चीज को हम बना लेते हैं बिलीफ. तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारी तरफ उसी चीज के लिए आएंगे, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. इफ यू हैव दैट ब्यूटी इनसाइड, द होल वर्ल्ड इज विद यू.
1: Somewhere that beauty actually lies in the eyes of the beholder.
0: That is of course a different aspect, but most important is ki wo ek energy hai aur energy hi energy ko akarshit karti hai. Kyunki dusra bhi to ek energy hai. Wo us energy ki taraf hi akarshit karega. Ye sharir hai kya? It's just like matter. Jaise hum ek sundar piece of furniture ko dekhte hain. Ek baar jab pehli baar dekhte hain, we say wow, it looks good. But that's all. उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है. अगर वो लुक गुड बहुत अच्छा है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है तो शायद वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है.
1: एंड देन वी स्टार्ट क्रिबिंग, यू नो, इफ वी बाय दैट एंड इवन इफ इट्स ब्यूटीफुल वी डोंट लाइक.
0: सो दैट फर्स्ट लुक इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग. मोर इम्पोर्टेंट इज कम्फर्ट. सो दैट कम्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनर्जी टू एनर्जी, नॉट विद द लुक्स. आपकी लुक्स सिर्फ एक फर्स्ट लुक देखकर कहेंगे हाँ लुक्स गुड or doesn't look good, but that doesn't matter. और उसमें भी आपका अपना self esteem बहुत matter करेगा. ज्यादातर दूसरे का important नहीं है. It's because हम अपने ऊपर हम feel करते हैं नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं तो दिखने में अच्छी नहीं
1: हूँ.
0: तो वो energy हम transmit कर रहे हैं. अगर आप feel करेंगे कि आप जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, it is first accepting yourself. लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. अगर यू आर नॉट कॉन्शियस, हम कॉन्शियस होते हैं नहीं मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, तो दूसरे का भी उस तरह का विचार चलना शुरू होगा. एक्सेप्ट योर सेल्फ, वॉच मैजिक, पीपल विल एक्सेप्ट यू.
1: डेफिनेटली
0: नॉट एक्सेप्ट यू, दे विल लव यू.
1: बिकॉज वी जस्ट सेड दैट एक्चुअली. अगर हम पहले देखें अपनी बात को कि हमारा जो भी थॉट है, जो संकल्प है, जो पॉजिटिविटी है,
0: एनर्जी
1: वही कन्वर्ट.
0: अगर मैं आपको ये एनर्जी ट्रांसमिट करते रहूं कि आप मुझे नहीं लाइक करेंगे, आप मुझे नहीं लाइक करेंगे, आप मुझे नहीं लाइक करेंगे,
1: आप मुझे नहीं लाइक,
0: मैं तो हूं ही ऐसे, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप दूर जाएंगे. अगर मैं ये एनर्जी ट्रांसमिट करूं कि मैं जो हूं जैसी हूं बिल्कुल ठीक हूं, अभी अंदर पुरुषार्थ चल रहा है, आउटसाइड आई एम फाइन, दिस इज द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, पीपल एक्सेप्ट मी.
1: फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, यू नो, अपने आप को एक्सेप्ट करें.
0: तो फिजिक जो लुक्स पर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ एस्टीम का. और उसी के कारण आज हम छोटे छोटे बच्चे अगर हम देखें तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं.
1: बिल्कुल,
0: वो अपने इनोसेंस को इतनी जल्दी खो देते हैं, इतनी जल्दी वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं,
1: इतनी कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं,
0: बॉडी कॉन्शियसनेस, तो वो अपने असली स्वरूप से बहुत जल्दी
1: दूर होते
0: जा रहे हैं. एंड वो ये समझने लग गए कि दूसरों की अप्रिसिएशन हमें, ये बिलीफ सिस्टम है कि दूसरों की अप्रिसिएशन तब हमें मिलेगी जब हम दिखने में बहुत सुंदर होंगे, जब हमने बहुत महंगे और बहुत अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनी होगी. सो द होल इंडस्ट्री, और इसको मैनिपुलेट सारा कौन कर रहा है, द इंडस्ट्री. वो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर और ज्यादा.
1: अगर हम फैशन देखें, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखें,
0: कॉस्मेटिक सर्जरी ऑल्सो,
1: यस. अच्छा, ये एक हमने ये बात तो की कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है दैट या फिजिकल ब्यूटी है वो हमारी सेल्फ एस्टीम को गवर्न करने का एक जो मुद्दा नहीं होनी चाहिए.
0: और उसके लिए हमें यही याद रखना पड़ेगा, आई डोंट हैव टू लुक ब्यूटिफुल, आई एम ऑलरेडी
1: ब्यूटिफुल
0: सोल. आई एम ब्यूटिफुल, आई कैन टेक केयर ऑफ माई बॉडी.
1: येस, एंड आई एम ए ब्यूटिफुल बींग, बेसिकली
0: बींग. येस, एब्सोल्युटली.
1: देयर इज दिस ईमेल जो एक अगेन मदर का है, और इसमें एक्चुअली मैं ही देख पा रही हूँ उनकी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 12 साल की है, एक 7 साल की है. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. एक बहुत एक्स्ट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पूरे हर स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ जीतती रहती है, और दूसरी जो है वो उतना ही चुप रहती है. मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं इतनी बार कहती हूँ कि बड़ी बहन को देखो वो क्या कर रही है, तो वो कुछ करती ही नहीं है. क्या करूं मैं कि वो जो है उस तक पहुंचे. बट आई फील एक्चुअली मैं को ये दिख रहा है कि ये कंपेरिजन इज अगेन मे बी वन कॉज कि वो छोटा बच्चा जो है, छोटी बेटी नहीं कर रही होगी.
0: हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है. ये भी एक पता भी नहीं चल रहा. और एक्चुअली अभी जो मदर कर रही होगी वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही
1: है. दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि मैं मोटिवेट कैसे करूं, दिस इज हर क्वेश्चन.
0: लेकिन
1: हाउ डू आई मोटिवेट माय डॉटर, यंग डॉटर.
0: लेकिन हमने एक्सेप्ट कहाँ किया कि दोनों अलग है. हमने एक तरफ कहा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, फिर हम एक को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि आई एम नॉट लाइकिंग, आई थिंक शी इज नॉट लाइकिंग कि जमीन आसमान का फर्क क्यों है.
0: सो यू ट्राइंग टू मेक बोथ ऑफ देम द सेम.
1: That's where the problem is.
0: कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, एंड ये रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि ये कितना डैमेज कर रहे होंगे वो छोटे बच्चे को.
1: एक्चुअली ये हम जिंदगी में अगर देखें

0: ये अनजाने अनचाहे कितनी बार प्रेरित करते हैं
1: और बहुत ज्यादा डीप फैक्टर है। आज मेजोरिटी हम लोग जो लो ये जो लो फीलिंग से गुजरते हैं, जिसमें हमारा अंदर का ये जो है बहुत खाली है, इट्स बिकॉज ऑफ द वे वी वर ब्रॉट अप। हमारे को बचपन से या पीयर प्रेशर में जो कुछ बोला गया था वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कंपैरिजन। या तो पेरेंट्स हमें किसी और के साथ कंपेयर करते हैं या खुद ही हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। सेल्फ एस्टीम, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ एट एनी पॉइंट। तो नाउ अगर ये दो बहनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अगर वो बहन अपने बारे में तभी अच्छा फील करेगी जब वो उस जैसी बन जाएगी। तब तक वो फील करेगी नहीं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं ठीक तब फील करूंगी जब मैं उस जैसा बन जाऊंगी। व्हिच विल नेवर हैपन,
0: बिकॉज शी इज डिफरेंट, शी मस्ट बी डिफरेंट।
1: द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ईच वन इज यूनिक। If each one is beautiful, but each one is unique, each one is different. इस दुनिया की सुंदरता ये है कि हम सब अलग हैं और हम उस सुंदरता जो भिन्नता में है हम उसको खत्म करने की कोशिश कर देते हैं, हम अपने एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए।
0: सिस्टर शिवानी, यहाँ डैमेज की बात आप कर रहे हैं। ये हमने कहा कि ये एक्सेप्ट, पेरेंट्स को भी ये मानना कि दोनों अलग हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस पे तो लेके जा रहे हैं कि आप जैसा बनो उस जैसा बनो, वो है नहीं बेसिकली वैसे। लेकिन एक स्टेज, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जो इंस्पिरेशन बनाई गई है उस तरह वो बन जाते हैं कुछ कुछ हद तक, लेकिन उनका बेसिक डैमेज कहाँ हुआ?
1: हाँ, लेकिन वो बाह्य रूप से जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों को फोर्स करके कुछ वो बना देते हैं जो वो पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे से जाके बात कीजिए आज नहीं तो 10 साल के बाद, एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा कहेगा मैं ये नहीं बनना चाहता था एज अ रोल, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या इवन एज अ पर्सन। एंड यू नो, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी वो बन जाएगा कि वो बनना चाहता था कुछ और या वो था ही कुछ और, लेकिन हमने उसको फोर्सफुली कुछ और बनाने की कोशिश की। सबसे डैमेजिंग होता है ये कंपैरिजन और इमिटेशन। मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह बोलना है, मुझे इनकी तरह चलना है, आई हैव टू कैरी माई सेल्फ लाइक दिस पर्सन, दिस इज वेरी डैमेजिंग। एक्सेप्ट कि हर एक हम यूनिक है, वो डिफरेंट है। अब अगर मैं आपके जैसे बनने की कोशिश करूंगी ना मैं आपकी तरह बन जाऊंगी और ना मैं जो थी वो रह जाऊंगी, आई एम मिडवे। तो वो मिडवे प्रोसेस होने के कारण पर्सनालिटी इज एब्सोल्युटली डैमेज्ड। मैं ना वो बनी ना वो रही जो मैं एक्चुअली थी।
0: आई थिंक समवेयर पेरेंट्स आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट
1: कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है वो ऐसा है, वो उसकी विशेषता है, क्योंकि दोनों बच्चों के अंदर विशेषता होगी। अब ये हो सकता है कि मुझे जैसे एक एक्स्ट्रोवर्ट है एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन दोनों के अंदर एक विशेषता है। अब अगर वो पेरेंट को वो एक्स्ट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी ज्यादा पसंद आ रही है, आई ट्राई टू पुश द चाइल्ड टू बिकमिंग लाइक दैट, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल।
0: यस, द वे शी इज ब्यूटिफुल,
1: वेरी ब्यूटिफुल। एंड उसकी नेचर को देखते हुए उसके अंदर जो विशेषताएं डेवलप हो सकती हैं, कोई स्किल्स, वो इंट्रोवर्ट है तो शायद वो पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट या जो भी पार्टीज इस तरह की चीज में हिस्सा नहीं ले सकती, वो कोई और चीज में हिस्सा ले।
0: पेंटिंग कर सकती है, वो कुछ और परफॉर्म कर सकती है, राइट
1: सिंगिंग में जा सकती है, राइटिंग में जा
0: सकती है, वो कुछ भी कर सकती है,
1: बहुत कुछ। लेकिन क्योंकि हम उसको उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं वो तो बन नहीं सकेगी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन हम उसके भी टैलेंट को और उसकी भी विशेषता को
0: और कहीं ना कहीं अगर ये जब मैं सोच पा रही हूँ ये कि ये देखा बहुत गया कि अगर ये एक ही स्कूल में हुई और अगर तो टीचर्स जो हैं
1: बिल्कुल
0: वो भी कंपेयर करते हैं
1: क्योंकि एक क्लास से गुजरेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे
0: कि अपनी बड़ी बहन को देखो वो कितना अच्छा करती है। तो ये पूरा जो पूरा क्योंकि अगली मेल जो है वो मैं यही ले रही हूँ पीयर प्रेशर की। एक निशांत है, दिल्ली से ही है और 9th क्लास के स्टूडेंट है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी चैट नहीं करूंगा और इंटरनेट पे मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, मेरे को बहुत आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय कहा जाता है मुझे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरे क्लास के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ऑर्कुट पे चैट करते हैं, मेरा बहुत मन करता है। लेकिन एक तरफ मम्मी, मुझे लगता है कि मम्मी ने मुझे जो है मुझसे प्रॉमिस लिया हुआ है तो कैसे मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ूं, और दूसरी बात ये कि अगर मैं नहीं जाता हूँ चैट पे तो मुझे सारे लोग हंसते हैं, सारे क्लासमेट्स हैं वो ऐसा करते हैं कि आई फील वेरी लो। मतलब मुझे लगता है कि क्या मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ दूं, लेकिन मन नहीं करता। तो इट्स लाइक अगेन अ पीयर प्रेशर। एक्चुअली
1: सही बात है, पीयर प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन।
0: हाँ, कि मैं जो है वो लो हूँ, लो सेल्फ एस्टीम में चला है
1: जो लो सेल्फ, हमारी

0: सेल्फ बहुत ज्यादा बहुत मतलब ये फंडामेंटल होगा बहुत ज्यादा इस बात पर आधारित है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं.
1: इमिटेशन भी करते हैं, नकल करते
0: हैं. इमिटेशन तो एक हो गया, जैसे हमने कहा कंपटीशन, इमिटेशन, कंपैरिजन, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, ये फिर भी माइल्ड है. लेकिन सारी जीवन हम इस में जरूर चलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोग अप्रूव करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद है, तो अगर लोगों को पसंद है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं ठीक हूँ. इट डजेंट मैटर इफ इट्स ऑल रॉन्ग, यू नो. इट्स लाइक आजकल तो देर इज सो मच ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट.
1: एक्चुअली बिकॉज दिस चाइल्ड ऑल्सो इज सेइंग कि मुझे पता है कि गलत है,
0: क्योंकि मेजोरिटी वो कर रहे हैं, तो मुझे भी वो करना चाहिए टू गेट देयर रिस्पेक्ट. यू सी, इट्स लाइक सपोज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एक टाइम पे वी वुड से इट्स नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू, लेकिन आज क्योंकि मेजोरिटी कर रहे हैं,
1: इससे सोशल ड्रिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी. सोशल ड्रिंकिंग नहीं करते,
0: और अगर नहीं करते हो आप, तो यू आर नॉट नॉर्मल. तो इसलिए मेजोरिटी में हम में से वो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे. अगर मैंने नहीं किया तो लोग कहेंगे अच्छा तुम तो बहुत संत बन गए हो. ये जो रिमार्क हमें दूसरे से मिलेगा, मतलब नहीं ड्रिंक करना मेरी विशेषता थी, लेकिन दूसरे के कमेंट के कारण मैं अपनी विशेषता छोड़ने के लिए रेडी हूँ. अच्छा आप तो बहुत सीधे हो, ये तो बहुत ढोंग है, आप संत हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, यू नो वट एवर काइंड ऑफ कमेंट्स दैट कम फ्रॉम पीपल. सिर्फ उस चीज को नहीं सुनने के लिए और वो उनके जैसा उनकी अप्रूवल लेने के लिए हम करना शुरू कर देंगे.
1: हैंडल दिस, यू नो,
0: इवैल्यूएट आपके लिए, नॉट इवन इन अ ब्रॉड सेंस के सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज वी आर नोबडी टू डिसाइड के सही क्या है गलत क्या है. मेरे लिए सही क्या है गलत क्या,
1: इंडिविजुअल लेवल पे,
0: इंडिविजुअल. जैसे इस बच्चे के लिए अगर उसने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि चैट नहीं करूं, फ्रेंड्स चाहते हैं कि करूं, लीव बोथ असाइड फॉर वन मिनट, ठीक है. तो नॉट दिस एंड नॉट दिस, जस्ट लीव बोथ असाइड, आस्क योर सेल्फ वॉट इज गुड फॉर मी. क्या मैं सिर्फ चैट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, क्या मैं इसलिए नहीं कर रहा सिर्फ क्योंकि मम्मी ने कहा है, तो दोनों वेज आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, यू नो,
1: क्योंकि दोनों में ही मैं गवर्न किसी और से हो रहा हूँ
0: एंड वी डोंट लाइक दैट. तो मुझे अपने आप से दोनों चीजों को समझना पड़ेगा. मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छा ही सोच रही होंगे, तो वो किस लिए कह रही है, थिंक अबाउट इट. बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट है, मैं कुछ और कर सकता था उतनी देर में, कोई बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं निकल रही है, मुझे ये भी नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ. इससे अच्छा ये ना होता मैं कोई जाकर एक्चुअली लोगों से बात करूं, तो मैं एनर्जी से बात करने की बजाय
1: एक मशीन से
0: बात कर रहा हूं. क्यों, व्हाई एम आई मूविंग अवे फ्रॉम एनर्जी, इट विल अफेक्ट माय पर्सनालिटी. तो ये सब चीजें अगर मैं एनालाइज करूं, देन आई टेक अ डिसीजन, आई विल नॉट चैट. एंड फिर जब वो मेरा अपना डिसीजन होगा सोच के रियली, फिर मुझे ये नहीं फर्क पड़ेगा अगर द होल वर्ल्ड, फॉरगेट जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स, अगर सारी दुनिया एक तरफ है और कहती है कि चैट करना चाहिए, लेकिन मैंने फील किया मेरे लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
1: तो फाइनली एक्चुअली इफ वी लुक एट इट, वी कम डाउन टू दिस सोल्यूशन, दिस रिजल्ट दैट सेल्फ एस्टीम एक्चुअली मेजरली डिपेंड्स अपॉन आर अगेन इनर स्टेबिलिटी.
0: राइट,
1: मैं डिसीजन लेने की जो पावर है मुझ में.
0: सेल्फ एस्टीम इज कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल. अभी जो हमने दो तीन बातें ली, हमारी हाउ आई फील इट्स बेस्ड ऑन हाउ आई लुक, तो वो भी टेम्पररी है, पोटे पतले वट एवर, काले गोरे वट एवर. सेल्फ एस्टीम सेकेंड वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई वॉन्ट टू बी, कि दूसरे की तरह हम बनना चाहते हैं, देन आई विल फील गुड. एंड थर्ड सेल्फ एस्टीम वॉज बेस्ड ऑन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. मतलब सोचने की बात है कि सारा दिन में या एक जीवन में हम कम से कम 1000 लोगों से मिलते होंगे, कम से कम. अब 1000 लोगों का ओपिनियन तो मेरे बारे में अलग अलग होगा ना. अच्छा हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों को भी ले लें, लेकिन उनका उनकी सोच के अनुसार, उनकी परसेप्शन के अनुसार उनका मेरे बारे में ओपिनियन होगा. और वो एक्चुअली ओपिनियन क्या है मैं उनके माइंड में घुस के चेक भी नहीं कर सकता. और आपका ओपिनियन मेरे बारे में क्या है, यू आर अलाउड टू हैव दैट ओपिनियन. आई ऑल्सो के नॉट से आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं.
1: अच्छा, और सबसे बड़ी बात है वो मेरी पर्सनैलिटी का ट्रेट है.
0: Right.
1: वो मेरे अपने इनर सेल्फ का एक पोर्ट्रेयल है.
0: आई कुड बी वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी, लेकिन अगर आपने काला रंग का चश्मा पहना है तो आपको ये व्हाइट नहीं दिखने वाली है. और अगर अब आप मुझे आकर कहो कि आपने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है एंड

0: believe you.
1: Then I am wrong actually.
2: Absolutely.
1: Because I have to understand that I am the white.
2: मुझे तो याद रहना चाहिए ना, मुझे तो पता होना चाहिए कि I am wearing a white साड़ी.
1: Again, यहाँ पे self awareness बहुत important हो जाता है.
2: अपने आप की अगर पहचान होगी, अपनी respect होगी, तो फिर दूसरे का राय आप सुनेंगे, लेकिन हमेशा दूसरों के ओपिनियन की तरह बनने की कोशिश नहीं करते रहे.
1: बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी की, कहीं ना कहीं ये तीन बातें जो सामने आई कि हमारी जो लो फीलिंग जो है, कहीं ना कहीं यू नो लाइक वी फील की पिच में ना, स्टमक के पिच में लाइक वी गोइंग डाउन, सो दैट ऑल डिपेंड्स बिकॉज हमने उन्हें एक्सटर्नलाइज कर दिया है सभी फैक्टर्स को. तो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस अगेन कम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सेल्फ एस्टीम उस पर बहुत डिपेंड करती है. थैंक यू सो मच. देखा कितनी आसानी से हमारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट वापस लौट सकती है जो हम अकेलेपन का, खालीपन का, हॉलोनेस की फीलिंग के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं. थोड़ा सा अगर खुद को जाने, खुद को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी ये हॉलोनेस डिपेंड करती है उन्हें छोड़ दें, खुद से बात कर लें, तो शायद हम हंसते खेलते जिंदगी को गुजार पाएंगे. आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में अपने बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जीवन का सबसे सुंदरतम समय ऐसा माना जाता है बचपन है। बचपन में किए हुए सभी कर्म हमें बुढ़ापे तक याद रहते हैं, सभी ना सही कुछ कुछ खास, लेकिन युवावस्था में किए हुए हमारे प्रत्येक कर्म पे नजर लोगों की होती है और वो अक्सर लंबे समय तक हमें याद रखने में, हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। दोस्तों, भारत को एक युवा देश माना जाता है क्योंकि भारत की 63% आबादी युवाओं से बनी हुई है। ऐसे में भारत का परचम, भारत को यशस्वी बनाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं, स्पेशली तब जब ऐसे युवा हो भारत में जो कि भारत को आगे बढ़ाने में, एक नया सवेरा लाने में दिन रात एक कर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सोचते हैं भारत के लिए कि आपको भी आज उनसे मिलकर के बहुत मजा आएगा। आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में यशस्वी भारत कार्यक्रम में हमारे बीच में जुड़े हैं कश्मीर से किफायतुल्लाह मलिक जी। किफायतुल्लाह मलिक जी भारत के सुंदरतम राज्य कश्मीर के एक छोटे से गांव बांदीपुरा से हैं। किफायतुल्लाह मलिक केवल एक होनहार युवक ही नहीं लेकिन भारत देश की शान भी हैं। सितंबर 2023 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। उनके कार्यों के लिए वो NSS अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना, नेशनल सर्विसेज स्कीम के तहत कई सारे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उनके आसपास रह रहे लोगों का बहुत बहुत कल्याण हुआ है। समाज सेवा में उत्तीर्ण यह व्यक्तित्व एक ऐसा है जिसके बारे में सुनते हुए आज आपको भी बहुत उमंग उत्साह आएगा और आपके भी घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भी ये एपिसोड आज बहुत खास रुचि से सुनना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत प्रेरणा प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं किफायतुल्लाह मलिक जी का। किफायत जी, आपका हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।

0: कि मुझे अपने यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे अपनी कुछ बातें, अपनी कहानी बाकी पूरी दुनिया तक रखने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। सबसे पहली चीज तो जो हमारे श्रोता साथियों को बहुत ही गर्व होगा जानकर के लिए कि आप न केवल एक समाज सेवी हैं लेकिन एक यंग समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी हैं। जब युवा देश का कुछ ऐसे चीजों के प्रति अपने को अपना रुझान रखता है, कुछ ऐसी चीजों के प्रति जो कि केवल पैसों से नहीं जुड़ा हुआ है, जो केवल प्रोग्रेस या प्रगति से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन पीपल से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, तब उस देश का हित जो है अवश्य ज्यादा होता है। तो इसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हमारे सभी श्रोता साथियों को हमने पहले भी बताया कि किफायत जी कश्मीर से हैं और कश्मीर जिसके लिए तो ये कहा ही जाता है कि अगर स्वर्ग कहीं है दुनिया में तो यही है, यही है मिनस्तो हमिनस्तो।
0: तो अगर फिरदौस बर्रोए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो
1: जी। तो हम सुनना चाहेंगे ऐसे एक स्वर्गिक सौंदर्य स्थान से आ रहे किफायत जी से उनकी कहानी उनकी जुबानी।
0: पहले तो सारे साथियों को जो हमें आज इस शो में सुन रहे हैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किफायतुल्ला मलिक है, मुझे सब लोग किफायत के नाम से जानते हैं और प्रोफेशनल लाइन में मुझे किफायतुल्ला के ही नाम से जानते हैं। मैं जैसे आफी ने कहा जन्नत से जिसे कश्मीर कहते हैं, वहां के छोटे से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के एक छोटे से गांव लवेपोरा में रहता हूं। और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है यही अपने गांव के ही स्कूल से हुई है। थर्ड फोर्थ क्लास तक मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल फोर्थ फिफ्थ में कुछ पार्टनर्स के बीच में क्लैश की वजह से बंद हो गया। ठीक है, तो आसपास कोई और प्राइवेट स्कूल नहीं था, गांव में रहते थे तो गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, तो मेरा एडमिशन वहां कराया गया और फिर मैंने वहां से बाकी स्कूलिंग वहीं से की एट्थ क्लास तक। तो वहां पे कुछ कमियां रह गई, जैसे कि आपको पता था आज से कुछ साल 10-15 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल क्या था, तो बहुत सारी कमियां रही हमारी तालीम में, एजुकेशन में, और साथ साथ में कश्मीर के हालात भी वैसे नहीं थे कि उतनी अच्छी तालीम हो पाती हमारी। इन पे आई उन्हों की वजह से फिर जो मेरी दिशा सोशल वर्क की तरफ बढ़ी। उसके बाद मैंने जो मेरा हाई स्कूल था वो थोड़ा ही मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हमें, वहां पे एक दूसरा गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वहां से मैंने 10th का कंप्लीट किया, हाई स्कूल मैंने वहां से कंप्लीट किया। फिर 10th क्लास से 11th और 12th क्लास मैंने अपना जो टाउन था बांडीपोरा वहां एक हाई सेकेंडरी थी और मुझे मौका मिला, मैं गांव से टाउन की तरफ आ गया। ठीक है, गांव की लाइफ एक थी, टाउन थोड़ा सा फिर भी अपग्रेडेड था, थोड़ा सा वो डेवलपमेंट की झलक हमें वहां दिखती थी। तो हाई स्कूल में आके अभी जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहां हमारे ही जैसे हमारे ही गांव के लड़के पढ़ते थे, तो सेम हमारा सबका सेम था, कोई ऐसी नई लर्निंग नहीं थी, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था, सिंपल जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग्स थी। टीचर साहब क्लास में आए, चार लाइनें सुना दी, गए दूसरे सर आए, उन्होंने चार लाइनें सुना दी, बस वही सिलसिला चलता रहा। लेकिन हायर सेकेंडरी में आने के बाद जब बहुत सारे बाकी बच्चों से मिले, थोड़ा सा अलग माहौल मिला, तो हमने सोचा यही माहौल मौका है अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को ग्रो करने का। तो हायर सेकेंडरी में बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पेशली एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, आपने सुना होगा नाम, मुझे मौका मिला उसमें पार्टिसिपेट करने का। को करिकुलर एक्टिविटीज में मुझे मौका मिला 2015 की बात है, 14-15 की बात है, मुझे मौका मिला, मेरी सिलेक्शन होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी के लिए। ठीक है, तब एक जमाना था जब एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ एक फार्मर की फैमिली से, तो वैसा कोई बैकग्राउंड हाई लेवल का बैकग्राउंड नहीं था जहां हमें मौका मिलता कभी वेकेशन वगैरह पे जाने का। तो मेरा ये बचपन से था मैं कब कश्मीर से बाहर जाऊं, कश्मीर से बाहर की लाइफ देखूं, क्योंकि कश्मीर एक अलग जगह है, कल्चर अलग है, माहौल अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन कश्मीर से बाहर का सब कुछ बिल्कुल अलग है। हम टीवी देखते थे, हम कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं चला कि हम अपना रिकॉर्ड करके टीवी पे दिखाते, तो जो भी हम टीवी मूवीज में देखते सब बाहर का देखते, तो अंदर से वो तलब थी कि हमें बाहर का सब माहौल देखने को मिले, बाहर के लोग ऐसे रहते। तो पहली बार मौका मिला जम्मू जाने का, तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं वैली से बाहर ट्रेवल कर रहा था।

तो बस वो शुरुआत तब हुई और आज तक वो सफरनामा कभी रुका नहीं, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो। तो ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां मेरी किस्मत ने मुझे नहीं पहुंचा। तो फिर एनसीसी में आने के बाद बहुत सारी मेहनत की, तो फिर मौका मिला एक बार स्टेज से बाहर जाने का। तो जब स्टेज से बाहर गया, जब मैंने बाहर के लड़कों को देखा, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां की लड़कियों को देखा, उनकी सोच में और हमारी सोच में बहुत ज्यादा अंतर था। अगर हम तब यहां सोचते थे, उनकी नजर यहां होती थी, तो वो विजन कहीं ना कहीं मुझे दिखा। तो फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत से मुझे ऐसे लोग मिले जिनका नजरिया बहुत लंबा था, जो बहुत लंबा देखते थे। वो कहते हैं ना, मुझे अपने चार दोस्त दिखाए, मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाता हूं। तो वैसे ही कुछ लोग मेरे लाइफ में। तो मैं जब वापस आया, मैंने बोला बेटा अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा हटके ही सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, तब मेरा सोशल वर्क वाला ये वाली चीज मुझ में नहीं थी कि मुझे सोशल वर्क में जाना है। तो मैंने डिसाइड किया मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। एनसीसी में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा क्योंकि वो आया था अभी कुछ करना है, वो करना है, ये करना है। तो मेरी सिलेक्शन होगी आरडी के लिए, रिपब्लिक डे कैंप। तो एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है, बड़ी मुश्किल से उसके लिए सिलेक्शन होती है। 2016 मेरी उसके लिए सिलेक्शन, तब मौका मिला फिर हमारे प्रेसिडेंट से मिलने का, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, बाकी वीआईपी से मिलने का। जब वो माहौल मिला कि वीआईपी कैसे रहते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, थोड़ा वो मेंटल हॉरिजन बड़ा हो गया। फिर जब मेरा हायर सेकेंडरी हो गया, फिर कॉलेज, थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उनने, जब भी मैंने बोला, कभी मेरे पेरेंट्स की तरफ से ना नहीं आया। मैंने बोला दिल्ली जाना है, कितने पैसे चाहिए, चाहे उनके पास होता था नहीं होता था, मुझे कभी नहीं रोकते। तो फिर मैंने बोला मैं कॉलेज यहां से नहीं पढ़ूंगा, मैं श्रीनगर जाना चाहता हूं। मेरी सिलेक्शन अमर सिंह कॉलेज में हो गई है, अमर सिंह कॉलेज वैली का एक बेस्ट कॉलेज है। तो वहां पे मैंने एडमिशन किया। वहां कुछ ऐसे दोस्तों से संगत हो गई जो सोचते थे चलो समाज के लिए कुछ करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, हमारे साथ ही में दोस्त कुछ ऐसे थे जिनके पास किताबें नहीं हुआ करती थी, वो हमसे भी कहीं ज्यादा गरीब थे। तो हमने क्या किया, तो हम बाकी दोस्तों से यूज्ड बुक्स ले देते जो उन्हें इस्तेमाल की होती, अभी उनको उससे कोई काम नहीं होता था, हम उनसे मोटिवेट करके तो वो ले लेते, वो उस तक पहुंचा देते जो उसको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो वो यूज्ड बुक्स से हम फ्रेश बुक्स पे कैसे आए, बाकी इनिशिएटिव्स बढ़ते रहे। फिर जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही मेरा रुझान उससे हटके, मैंने बोला चलो आर्मी में तो कर सकता हूं मैं देश के लिए कुछ, लेकिन जो मैं सोसाइटी में रह के एक सोशल सोल्जर बन के कर सकता हूं वहां नहीं कर सकता, मुझे लगा मेरी ज्यादा जरूरत यहां है न कि वहां। फिर मैंने वही प्लान किया, मैं करूंगा यूनिवर्सिटी ज्वाइन, वो भी सोशल वर्क में, मैं इससे मास्टर्स करूंगा ताकि मेरा जो सोशल वर्क वाला अप्रोच है ये थोड़ा प्रोफेशनल बन जाए, इसमें वो प्रोफेशनलिज्म आए ताकि मैं बेटर सोसाइटी को सर्व कर पाऊं। अभी तक हम किताबें देते थे, कॉपीज देते थे दूसरों से मांग के, फिर टाइम वो आया हमें वहीं से कांटेक्ट किया जा रहा था कि आपके पास कितने बच्चे हैं, इतनी कॉपीज डोनेट करना चाहते हैं। तो ग्रुप बढ़ता गया, लोग मिलते गए साथ साथ। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के बाद, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत जबरदस्त, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में फैकल्टी बहुत अच्छी थी, बहुत साथ मिला। तो वहीं पे मौका मिला मुझे साथ साथ में एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम ज्वाइन करने का, कि वहां किसी सर ने बोला किफायत अब इतना सब कुछ कर रही है ज्वाइन कर लो, इसकी वजह से तुम्हें और सपोर्ट मिलेगा बाकी चीजों के लिए, तो अच्छे से कर पाओगे। मैंने बोला हाँ अच्छी चीज है, मैं कभी इन चीजों से पीछे नहीं हटा, जहां मुझे लगा कि यहां मौका है, यहां कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं नहीं छोड़ता था, मैं चला जाता। तो फिर ज्वाइन कर लिया। तो वहां पे जब उनके साथ काम किया, खुद जो काम किया, अपने जो अभी हम 5-10-100 लोगों तक पहुंचते थे, 100 से ज्यादा, अभी हम जिस बच्चे को एक किताबें देते थे, अभी हम पूरे साल के लिए 5 कॉपीज, उनको पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी उनको चाहिए होता था। ये सिर्फ मैं नहीं करता था, मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे, मेरे साथ मेरी जो टीम वॉलंटियर्स बागी थे, उनके साथ मिलके हम इनिशिएटिव लेते हैं। हमारे पास 100 बच्चे हैं, हमें पैसा रेज करना पड़ेगा इन 100 बच्चों तक ही। तो जैसे 10-20 दोस्त होते थे, कोई 1000, कोई 3000, कोई 5000, कोई 1000, कोई 500 जमा करता था, और हम श्रीनगर में एक होलसेलर है, बहुत अच्छी रेट पे देता था। तो वो जो कॉपी मार्केट में हमें 100 रुपए की मिलती थी, वही कॉपी हमसे 50 और 60 रुपए में देता था। वो बोरा जो इसमें काम कर रहा हूँ, मेरा वाला पार्ट है इसमें, तो उससे हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाते थे। फिर उससे वो स्टेशनरी से फूड किट्स तक, फिर अभी हमें पास जो हम सोशल वर्क में फील्ड वर्क करते थे, हमें बहुत सारे ऐसे गरीब मिलते थे।

0: जैसे कोई जिनका हस्बैंड मरा हो, कोई विडो, उनके दो तीन बच्चे हो, भी कमाने वाला कोई नहीं, तो हम सोचते थे इनके लिए इनके घर पे राशन का किट पहुंचा देते हैं। कोई ऐसा घर जहां उनका जो फैमिली हेड हो वो बहुत सिक हो, बहुत बीमार हो, वहां कोशिश करते पहुंचने की। तो वैसे ही इनिशिएटिव्स बढ़ते गए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए। अभी एक गांव से हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट से हम दो डिस्ट्रिक्ट से दो से पांच तक पहुंच गए। ऐसा ही अपना काम बढ़ाते रहे। मेंशन करना भूल गया, मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर भी हूं। मैंने अपना बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग के कोर्सेज मनाली से किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लाइट स्पोर्ट्स मनाली हिमाचल प्रदेश, और अपने डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट एडवांस माउंटेनियर हूं। और उस वजह से ये हुआ कि जो माउंटेनियरिंग वाला पार्ट था मुझमें, मैंने सोचा अगर इसके लिए कर रहा हूं, मुझे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, दैट्स प्रकृति, हमारा जो नेचर है, एनवायरमेंट है, इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने इनिशिएटिव लिए प्लांटेशन के, बाकी चीजों के, तो क्लीनलेस ड्राइव्स के, डल को साफ करने के, बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हमने लिए, प्लास्टिक फ्री कैंप्स के लिए। तो फिर उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बेस्ट वन मित्र अवार्ड भी मिला। फिर सोचा अभी कश्मीर, आपने सुना होगा कश्मीर अभी पंजाब के बाद कश्मीर उठता पंजाब कश्मीर मर रहा है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमने सोचा बीइंग ए सोशल वर्कर हम पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, हम इस चीज को रोकें, क्योंकि ड्रग एडिक्शन हमारे कौम के लिए नासूर बन रहा है, ठीक है, जो हमारी यूथ को, हमारे फ्यूचर को तबाह कर रहा है। तो फिर सोचा इस चीज में काम करने के लिए हमने परमिशन ली कुछ इभेंस से, कि पहले अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लिखवाया कि हमें काम करने का मौका दीजिए, जो कश्मीर का सबसे बड़ा ड्रग एडिक्शन सेंटर है एसएमएचएस हॉस्टल में। तो वहां हमने वॉलंटरी बेस पे 10-20 दिन काम किए, वहां पे समझा कि क्या इश्यूज रहते हैं यूथ को जो इसमें चले जाते हैं, ये लोग कैसे, क्या इनको पेडलर्स फंसाते हैं, तो इनका क्या इस पे नजरिया। तो बहुत सारे इनपुट्स वहां से मिले, फिर बाहर आके वैसे ही काम करना चाहो उस चीज पे भी। तो ओवरऑल सोसाइटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं, हमने कोशिश की हम उन सब पे काम करें। तो वैसे ही फिर किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो एक दिन इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया। तो एक दिन शाम को मैं अपने दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा था, तो फोन पे बात कर रहा था, अचानक से मेल का साउंड आया। मैंने ऐसे ही देखा, लाउडस्पीकर का फोन मेरे हाथ में ही था, जो ही मैंने मेल देखा, मैंने फ्रेंड को बोला आप फोन रखो मैं ये देख रहा हूँ। वो मेल का आना, उसका फोन काटना, फिर शायद 7 बजे के आसपास, 7 से शाम के 11-12 तक मेरा फोन रुका ही नहीं, इतने सारे फोन, इतने सारे कॉल्स। तो फिर यही रही मेरी जर्नी, जैसे कि मैंने बोला, बांदीपोरा के एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर, के एक छोटे से घर से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक का सफर।
1: जैसे कि आपने कहा कि आपका गांव छोटा है, लेकिन इस छोटे से गांव में ऐसे ऐसी हस्तियां, आपकी जैसी हस्तियां रहती हैं, जिनके दिल में इतने बड़े बड़े सपने होते हैं, और साथ ही साथ लोगों के लिए इतना बड़ा दिल होता है। तो जिस गाँव में लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं, वो गाँव छोटा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपकी इस जर्नी से मुझे लगता है हमारे बहुत सारे युवा साथी, स्पेशली जो सुन रहे हैं और जो बाकी भी लोग सुन रहे हैं, उनको ये प्रेरणा जरूर मिली है कि कभी भी आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, उस परिस्थिति को हमेशा की मेरी परिस्थिति ऐसा सोच करके नहीं जीना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं और व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बदलता भी है। लेकिन अगर जो दिल शिकस्त हो जाता है, उसके लिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी हो, लेकिन दिल शिकस्त व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे किफायत जी ने अभी बताया हमें साथियों, कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कमी कितनी है मेरे आसपास, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उन कमियों में भी रहते हुए। आज उस जज्बे ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सितम्बर मास में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कराया। आगे हम बढ़ते हैं इस चर्चा में और किफायत जी से कुछ बातचीत करेंगे। किफायत जी, आप जब अपनी कहानी सुना रहे थे तो मुझे एक नजारा दिख रहा था, जिसमें एक बहुत खूबसूरत वादियों में एक बच्चा खेल रहा है और सारे अपना जर्नी शेयर कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में कश्मीर की व्यवस्था या कश्मीर की स्थिति वैसी ही है जैसे मैं सुन रहा था, सोच रहा था, या उसमें कुछ अलग भी है?
0: क्या है ना कि कश्मीर के दो फेसेस है, एक फेस जो आपको आपकी स्क्रीन दिखाती है, जिन स्क्रीन से आप कश्मीर को देखते हैं, एक वो है, और एक वो है जो आप अपनी आंखों से आगे यहाँ देखते हैं। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है पिछले कुछ सालों से। हाँ, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हालात खराब नहीं थे, कश्मीर में हालात खराब थे, इवन बहुत खराब थे, बट उतना हाल खराब नहीं था जितना दिखाया गया। तो इसमें मीडिया का बहुत वो रोल रहा जिसने वैसे कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। जैसे मेरी कुछ टाइम पहले मेरी दोस्त से बात हो रही थी, तो बोल रहा था कि

0: आपको पता है अभी बाहर जो आना जाना लगा रहता है, तो बाहर जब कोई कश्मीर का बोला जाता है कि क्या तुम कश्मीर से हो, तुम्हारे जेब में पत्थर तो नहीं है, ठीक है, तो अभी कश्मीर के लड़के जो पढ़ते वो बोलते हम कश्मीर से और हमारे जेब में पत्थर नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो शाहरुख खान वाला वो डायलॉग फेमस था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो वैसा नहीं था। हाँ, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी कश्मीर में, ऐसा नहीं है, बट वो कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के एक छोटी सी गली में हो रहा था। तो बाहर मीडिया में ये दिखाया जा रहा था कश्मीर में ये हो, तो उनको लग रहा कश्मीर में हो रहा है पूरे के पूरे। कश्मीर बहुत बड़ी जगह है और इस बड़ी सी जगह के छोटी सी गली में हो रहा था और दिखाया जा रहा था पूरे कश्मीर में हो रहा। बीन मैं कश्मीर में रह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार स्टोन पेल्टिंग एक्सपीरियंस की है, अपने आंखों के सामने देखी है, बाकी कभी नहीं देखी है। जो बंदा कश्मीर में रह रहा है, कश्मीर की वादियों में घूम रहा है, उसने एक बार देखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे था वो। लेकिन ऐसा नहीं था, नहीं था, वो चीज थी।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो मीडिया है उसका रोल जो होता है वो इतना क्रिटिकल रोल है, लेकिन उस क्रिटिकल रोल को अगर ना समझ करके लोग केवल अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने टीआरपी के लिए और रोज समाचार को या इन्फॉर्मेशन है, नॉट जस्ट समाचार, नॉट जस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन को अगर कोई रोचक बनाने की कोशिश में कुछ ऐसी चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं जो कि न केवल वहां रह रहे लोगों के लिए नुकसानकारी है, लेकिन पूरे देश के लिए जो उनसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी नुकसानकारी हो जाता है। ये जो बात आपने बहुत सही कही जी,
0: उस चीज की वजह से क्या हुआ, कश्मीर के जो बहुत सारे बच्चे थे उसके उन इंसिडेंट्स के बाद जो बाहर पढ़ते थे, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ाई की तरफ लगे हुए थे, इवन कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर पढ़ रहे थे, तो उनको वहां डर जताने लगा कि आप लोग पत्थरबाज हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस वो मीडिया की वजह से वो जो क्रिएट किया गया सिनेरियो, तो उस वजह से बहुत इफेक्ट हुआ बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों।
1: ये चीज एक और बात की तरफ मेरा ध्यान खिंचवाता है कि मीडिया का रोल तो है ही बहुत पावरफुल, लेकिन लोगों का भी इसमें जिम्मेवारी बनता है कि जो भी चीजें मीडिया में दिखाई जा रही है उनको एकाएक एकदम नहीं एक्सेप्ट कर लिया जाए। विदाउट वेरिफिकेशन हम जो भी चीज हमारी आंखों के सामने आती है उसको अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम उसके स्लेव बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो भी मीडिया में जो भी चीजें देखते हैं, चाहे वो कश्मीर के लिए हो, चाहे वो वहाँ के जीवन जापन या लाइफस्टाइल के लिए हो, जो भी वो देखते हैं उस चीज को किस नजरिए से देखना चाहिए उनको, ये आप कैसे समझाएंगे?
0: मेरा इसमें ये मानना है कि जब भी हम कोई चीज देखे, कोई चीज कंज्यूम करे, अभी हमारा अगर आप देखें ना, आधी से ज्यादा जिंदगी हमारा सोशल मीडिया बन चुका है, डिजिटल लाइफ बन चुकी है। अगर हमें 5 मिनट कहीं पे वेट करने को बोला जाए, 5 मिनट से हम 4 मिनट फोन में लगा देंगे, ठीक है, तो 24/7 में हम एटलीस्ट 12-13 घंटे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से कंज्यूम करते ही रहते हैं। तो पहले तो सोर्स क्रेडिबल होना चाहिए जहां से आप ले रहे हो, तो दूसरी चीज हमने एक न्यूट्रल लेंस पहनना है, ठीक है, न्यूट्रल लेंस इन द सेंस हम ऐसे लगाते हैं जैसे कुछ हो गया, हमने एक लेंस पहन लिया कि कश्मीर टेररिज्म का गढ़ है, कश्मीर में पत्थरबाज है, कश्मीर में वो है, तो हमें जो भी दिखेगा ना वो वही होगा जो हमने यहाँ दिमाग में अपने फिट कर दिया। तो जब एक न्यूट्रल लेंस पहनेंगे ना हम कि नहीं, वहाँ लोग वैसे भी रहते हैं जो चाहते हैं हमें पीस मिले, जो चाहते हैं यहाँ खुशियाँ आए, जो चाहते हैं यहाँ अमन आए, वो भी लोग हैं, तो कश्मीर में वो भी रहते हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जब ऐसा एक न्यूट्रल लेंस सामने आ जाएगा ना, तो जब भी आपको कोई मीडिया चल वैसा कुछ दिखाएगी, आपको वो भी लोग भी याद आएंगे, तो तभी आप इन सब चीजों से ऐसे वो पॉजिटिव वे में इस चीज को देख सकते हैं। हाँ, हालात खराब है, हो रहा है, ये कश्मीर में नहीं हो रहा, कश्मीर की एक जगह पे हो रहा है, ठीक है, सारे कश्मीर में नहीं हो रहा, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए हर चीज को लेकर। अगर हम वो जैसे कट्टर वाला सोच पैदा करेंगे तो इनसे हालात दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते जाएंगे, क्योंकि जो चीज मोहब्बत से मिलती है, जो चीज प्यार से मिलती है, वो मार से नहीं मिलती।
1: तो सभी श्रोता साथियों से मैं अभी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं न्यूज में, मीडिया में या सोशल मीडिया में, कश्मीर के लिए विशेषकर, उसको एकाएक विश्वास ना करें। उसको विश्वास करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आप अपना इंटरनल लेंस, जैसा कहा खिपाया जी ने, कि अंदर अंदर की जो आपकी आंखें हैं वो क्या देख रही हैं बार बार, और वही देखने में अभ्यस्त हो गई है, हैबिचुएटेड हो गई, तो इसीलिए क्या जो इन्फॉर्मेशन मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसको कंज्यूम करने में मेरा कोई भला हो रहा है।

0: या उसको कंज्यूम करने में देश का कोई भला हो रहा है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नफरत बढ़ाने वाली, अपने अंदर गुस्सा, अपने अंदर ईर्ष्या, अपने अंदर घृणा द्वेष, ऐसी भावनाओं को जो इन चीजों से बढ़ावा मिलता है, उन चीजों को अगर हम दूर रखें अपने से, तो न केवल हम अपना भला करेंगे लेकिन पूरे देश का भला करेंगे। जैसे किफायत जी ने बताया कि कश्मीर के एक छोटे से भाग में कुछ उत्पाती कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे कश्मीर को जाने से डरे, उसमें जाने से, वहां जाने से, वहां के लोगों से घबराएं, ये गलत। जैसे कश्मीर की वादियों में इतने सुंदर सुंदर पहाड़ है दोस्तों, जो आपको कहीं और नहीं मिले, और उन पहाड़ों में आपको घुमाने के लिए किफायत जी भी रेडी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे माउंटेनियरिंग का उन्होंने कोर्स किया हुआ है। वो एक ए लेवल सर्टिफाइड माउंटेनियर है, वो आपको पर्वतारोहण में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
1: आपको पता है अभी इतने टूरिज्म के साथ थोड़े से कनेक्टेड है हम, क्योंकि हमारा हमेशा ये रहा है कि हम कैसे वैसी जगह एक्सप्लोर करें कश्मीर की जो लोगों ने अभी नहीं देखी है, और यहाँ के टूरिज्म को थोड़ा सा और बढ़ावा दे।
0: एक चीज मुझे जानना है, जैसे कश्मीर में जो पर्वतारोहण के लिए जाते हैं, क्या सारे पहाड़ी बहुत ही दुर्गम है? वेरी मतलब जो कोई व्यक्ति नया है, जिसको बिल्कुल भी पर्वतारोहण का कुछ भी इतना अनुभव नहीं है, क्या वो भी वहाँ जाने का एम रख सकते हैं कि हम भी वहाँ जाएं, वहाँ के पर्वतों को पहाड़ों में जा सकते हैं?
1: कुछ माउंटेन्स है यहाँ पे, जैसे छोटे छोटे ट्रैक होते हैं यहाँ पे, जैसे आपने बहुत सुना होगा ग्रेट लेक स्ट्रीक, ठीक है, कश्मीर ग्रेट लेक केजीएल, तो उसमें वो अभी जैसे आप माउंट एवरेस्ट का बोलेंगे ना, कि माउंट एवरेस्ट का भी रास्ता बना हुआ है, बस अपना चढ़ना शुरू कर दो, सीढ़ी वीढ़ी लगी हुई है, तो वैसा ही वो ट्रैक है, एकदम रास्ता बना हुआ है, उतना टफ नहीं है, बीच बीच में आप बहुत जगह पे रुक लेते हैं, तो उसको हर एक बंदा कर लेता है, एक हफ्ते में थोड़ा सा कार्डियो कर लेता है तो उसको इजिली कर पाता है। सो रही बात माउंटेनियरिंग की, ये थोड़ा टेक्निकल वाला पार्ट है, अगर किसी को इसमें रुझान हो, माउंटेनियरिंग वाले फील्ड में आना चाहते हो, माउंटेन्स क्लाइंब करना चाहते हो, तो उसको एटलीस्ट बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स तो करना ही चाहिए। तब तक ना ही कोई ग्रुप उनको साथ लेगा, ना ही कहीं से उनको परमिशन मिलेगी माउंटेन्स में जाने के लिए, क्योंकि माउंटेन्स और बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है, एक गलती इंसान की जान ले सकती है। तो पहली प्रेफरेंस, मेरे ख्याल से पहली प्रायोरिटी हमारा जो जिंदगी है, लाइफ है हमारी, उसको देनी चाहिए बाकी चीजों से।
0: तो जब आप माउंटेनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, तो आपके माता पिता ने आपको रोका नहीं?
1: मैंने जो पहले बोला, जब भी मैं अपने पेरेंट्स को कुछ बोलता था ऐसा करना है, तो वो कभी ना नहीं करते थे मुझे, क्योंकि उनको पता था ये बच्चा इतने सारी जो चीजें परेशानियां थी पहले लाइफ में, उन सबको पीछे रख के अभी इतना अच्छा कर रहा है, तो हमें भी इसको नहीं रोकना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कभी ना नहीं कहा, कभी ना, पहले बोलते थे एक बार अगर अच्छा लग रहा है सोच ले, अगर लग रहा है जाओ, ठीक है, तो वैसे ना नहीं किया गया। लेकिन जब वहां से मैं वापस आता था, जब मैं घर वाले मेरे फोटोज देखते थे, तो मेरी माँ बहुत घबराती थी, ये क्या कर रहे हो, इसको क्या मिलेगा इस पत्थर पे, इतने ऊपर पत्थर पे चढ़ के, अगर कुछ हो गया, अगर रस्सी कट गई, हम बोलते ये वैसी रस्सी नहीं, वैसी रूप नहीं होती जो इजिली कट जाए, बहुत मजबूत होती है और दूसरी सेफ्टीज भी लगी होती है, तो फिर भी क्या ही फायदा है इस पे चढ़ना, कुछ ऊपर मिला रखा हुआ है जो तुम्हें मिलेगा। मैं बोला मैं आपको तो नहीं समझा पाऊंगा, ऊपर क्या रखा हुआ जो मुझे मिलेगी, अलग चीज एक है। बोला अभी जो अच्छा लगे वो करो, कोई मसला नहीं, तो वैसा कुछ हुआ नहीं।
0: लेकिन जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसे युवा साथी जो खेल कूद या ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत रुझान रखते हैं, और हो सकता है पढ़ाई में उनका इतना दिल नहीं लगता है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि माउंटेनियरिंग एक उम्दा प्रोफेशन हो सकता है उनके लिए?
1: अगर हम अभी कुछ सालों में देखिए, इंडिया में माउंटेनियरिंग का क्रेज बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, अभी सिर्फ जो लोग यहाँ रहते हैं ऐसी जगह पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर, लोग जो महाराष्ट्र पुणे में रह रहे हैं, वो अपनी ट्रैकिंग की कंपनीज, माउंटेनियरिंग की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जब माउंटेनियरिंग के कोर्स किए थे, मेरे साथ अगर आप कोर्स का मैं देखे, जैसे फॉर 10 बंदे थे, 10 में से 8 ऐसे एरियाज के थे, बाहर साउथ के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, दिल्ली के थे, ठीक है, तो लोग इसमें बहुत आ रहे हैं, बहुत यंग प्रोफेशनल्स इस फील्ड के बन रहे हैं। हाँ, इसमें वो एज ए करियर देख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लोग सिटी लाइफ से भी बहुत तंग आ चुके हैं, अभी लोग सिंपल सी जगह नहीं जाना चाहिए, चलो मैं पहलगाम जाता हूँ कश्मीर के गुलमर्ग जाता हूँ, सोनमर्ग जाता हूँ, अभी वो लोग चाहते हैं अगर मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ मैं स्की भी करूंगा, मैं स्कीइंग भी करूंगा, अगर मैं पहलगाम जा रहा हूँ, पहलगाम के ऊपर एक ट्रैक है एक दिन का, मैं वो भी करके आता हूँ, मैं ट्रैक होगा, पहलगाम तो अब देखा हो देखी हुई चीज है, तो वो ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए उनको गाइड भी चाहिए, उनके लिए उनको ट्रैक लीडर भी चाहिए, उनके लिए उनको बाकी चीज भी लोग भी चाहिए। तो इसमें करियर ऑप्शंस है अभी कश्मीर में, अगर आप देखेंगे उतने सारे अभी इस चीज में प्रोफेशनल्स नहीं है माउंटेनियरिंग में, जिन जो बेसिक और एडवांस सर्टिफाइड हो किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, अगर कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, तो उन चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
0: और इसमें अगर मैं पूछूं कि क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लोगों को उतनी अनुभव होती है जब वो इस जॉब को अच्छे से करने लग जाते हैं?
1: अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, जो ट्रेवल कंपनीज हैं इंडिया में, वो एज जिसके पास बेसिक एडवांस हो एज ए ट्रैक लीडर हायर करते हैं। तो अगर छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो भी ट्रैक लीडर को अराउंड 20,000 तक का मंथली सैलरी देती है, ठीक है। और साथ साथ में अगर कोई अच्छी जैसे इंडिया हाइक से बाकी हो, वो भी 30,000-35,000 तक भी जाता है। और ये ऐसा काम नहीं है जो आपको डेली बेसिस पे करना है, आप इसको एज अपनी साइड हसल भी कर सकते हैं। तो एक हफ्ते ट्रैक कर लिया, अभी एक दो हफ्ते रुक गए, तब कुछ और कर लिया, तो वैसा है। अभी तो
0: इसमें भी जो ट्रैकिंग करने वाले जो लीडर्स होते हैं, जैसे आप हैं या आपके से भी पहले जिन लोगों ने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, कई बार उम्र और हेल्थ इसके बीच में एक शायद लिमिटेशन क्रिएट कर सकता है कि एक सर्टेन एज तक ही आप इस चीज इस प्रोफेशन में जुड़ सकते हैं। तो इज देयर अ पर्टिकुलर लिमिट फॉर दैट?
1: हाँ, अभी अगर हम देखें ये वाला जो फील्ड है, इसमें आपकी फिजिक और आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट है, हेल्दी है, आप ये काम तभी कर सकते हैं। हेल्थ में जरा सा भी बिगाड़ आ गया तो ये चीज गई, तो उस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है साथ साथ में। और रही बात जो आपने बोला, अभी अगर बंदा एजड हो जाएगा फिर उसको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बंदा जिस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है तो फिर जरूरी नहीं वो रोज इसके साथ पर्वत पे चला जाए, उसकी सारी एक्सपीरियंस यूज करके वो अपनी एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकता है, अपना एक एडवेंचर क्लब स्टार्ट कर सकता है, जिससे वो बाकी यंग प्रोफेशनल्स को उसमें लगा के एक तो उनके लिए भी रोजगार का रास्ता ढूंढ ले और अपने लिए भी कंटिन्यू करे। तो जहां चाह है वहां राह है,
0: जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये तो बहुत सही बात है। लेकिन राहों में लोग जो है ना लिटरिंग बहुत करते हैं, बहुत कचड़े फैलाते हैं, स्पेशली देखा गया है, क्योंकि मैं भी कई माउंटेन्स में जा चुका हूँ और मैंने देखा है कि मैं माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ लेकिन करते समय मुझे ख्याल आता है मुझे ये छोड़ करके ना इस रास्ते की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे आने वाले लोग तो गंदा करेंगे लेकिन मेरे आगे जो गए वो भी कर चुके हैं। कई बार हम प्रकृति से केवल लेना, इतना हमारे अंदर वो भाव रहता है कि मुझे लेना है सौंदर्य को भी लेना है, एक्सपीरियंस भी लेना है, लेकिन जाते समय हम ये नहीं देखते कि हमने उसको कितना दिया है और क्या दिया है। कई बार क्या दिया है मैं केवल कचरा ही होता है। तो आप बता रहे थे कि आपने माउंटेन की क्लीनिंग का भी, डल लेक की क्लीनिंग का भी बहुत सारा इनिशिएटिव शुरू किया है, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताएं।
1: जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है। हम इंसानों का क्या है, हम जहाँ चले जाते हैं हम बहुत सारा अपने साथ लेके जाते हैं, हम खुशी खुशी से यहाँ अपने बैग्स में चॉकलेट्स भर के लेके जाते हैं, चिप्स या बाकी सारी चीजें भर के लेके जाते हैं, जब वो यहाँ से भरी हुई होती जब हमें चढ़ना होता है। लेकिन जब हमें वहां से वापस उतरना होता है और जो इसमें वजन वाली चीज होती वो भी हल्की हो गई होती है, फिर भी वो वाली चीज में बोझ लगती है और वो वहीं पे छोड़ देते हैं, जो फिर कंटिन्यूअसली वहीं पे रहता है। और उसके लिए जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड फ्लॉक ज्वाइन किया, तो मैं उनके साथ संडे संडे को ट्रैक पे जाता था एज ए ट्रैक लीडर, तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उनके साथ मिलके जो पार्टिसिपेंट्स हमारे होते थे, क्योंकि जब ट्रैक पे जाने से पहले एक ब्रीफिंग होती है उनकी, तो उसी में हम उनको बता देते हैं कि आपकी ट्रैकिंग में आप इंजॉय करें अच्छे से, जो वहां पे 4-5 घंटे 6 घंटे रहेंगे, उन 6 घंटों में हमें आपका आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा किसी जिस जगह हम जाएंगे, हम पहली चीज तो आप अपना कुछ भी नहीं फेंकेंगे, आप अपना सारा का सारा जमा रखेंगे जो भी आप यूज करेंगे, लेकिन जब फिर आप वहां से वापस हम आएंगे, हम आधे घंटे की एक छोटी सी क्लीनलेस ड्राइव करेंगे वहां पे, ठीक है। तो हम क्या करते, जब हम आते थे ना तो सारे के सारे इतने खुशी से वो काम करते थे, मैं आपको क्या ही बताऊं।
0: एक लफ्ज आता है टूरिज्म में, इको टूरिज्म, अर्थात इस प्रकार का आप टूरिस्ट एक जिम्मेवार टूरिस्ट बने, जो कि जहां पर भी जा रहा है उस स्थान को, उसके भव्यता को नुकसान न पहुंचाए किसी भी तरीके का। तो इको टूरिज्म

0: कश्मीर और आपका जो प्रोफेशन है, इन तीनों में आप क्या कर चुके हैं या क्या करना चाह रहे हैं?
1: अगर मैं इको टूरिज्म की बात करूं, अभी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर उस मामले में अभी थोड़ा सा पीछे है, पीछे अभी मैंने 2017 की बात है शायद, जब मैं सिक्किम में था, तो मैंने सिक्किम में क्या देखा, हमारे जो ग्रुप था उनने बोला आप एक रैबिश बैग कैरी करेंगे, पैल्ट की तरह उसको पहनना पड़ता, साइड में छोटी सी जगह, जो आप खाएंगे वो आपके इसमें जमा होना चाहिए, आप कहीं पे फेंकेंगे नहीं। तो वहां जगह इतनी साफ थी, आपको नीचे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। तो सेम चीज मैंने कहा देखी लेह में अगर आप जाएंगे वहां भी आपको कचरा वचरा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स पे आप देखें आपको बहुत कचरा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इस चीज को अभी धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है, कश्मीर टूरिज्म इन्होंने इस पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए ताकि इको टूरिज्म को प्रमोट करें, ठीक है, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस पे पॉलीथीन का बैन करना हो या ऐसी चीजों का जिनकी वजह से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है ऐसी चीजों को बैन करना हो, वैसे बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमने अभी तक कोई बड़ा सा इसमें कोई बड़ी चीज नहीं की जो मैं यहां से बता सकूं मैंने ये किया मैंने वो किया। हाँ, लेकिन छोटी लेवल पे कुछ चीजें हमने जरूर की है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करना हो या खुद से ऐसी जगहों पे क्लीनलेस ड्राइव्स करना हो, वैसे वैसे इनिशिएटिव्स हमने लिए।
0: ये जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे गंगोत्री या ऊपर गंगोत्री के ऊपर अगर आप ट्रैक करने जाए तो वहाँ जो फॉरेस्ट रेंजर्स है वही आपको एक बैग देते हैं कि आप जो भी खाएं जो भी कचरा है आप इस बैग में डालें, उस बैग के होते हुए भी एंड वो कंपलसरी बैग होता है, लोगों को कंपलसरी लेना होता है क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर्स से आपको टिकट मिलेगा तभी आप ऊपर जा सकते हैं। उसके होते हुए भी अगर रास्ते में कचरा मिल रहा है इसका मतलब साधनों की कमी नहीं है और तरीकों की कमी नहीं है, कमी है हमारे एटीट्यूड हमारी में। अगर किसी को ये आदत ही नहीं है, किसी के अगर ये पर्सनालिटी में उसके व्यक्तित्व में ये बात है ही नहीं कि अपना किया हुआ कचरा मुझे अपने साथ रखना है, तो वो चाहे आप उसको कितने भी साधन दे दें वो कभी भी उसको यूज नहीं कर पाए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा सैलानी है, जो नए टूरिस्ट हैं जो वहाँ आएंगे, उनको ये आदत डेवलप करने की जरूरत है कि आप अगर अपने घर में भी कचरे को सही जगह पे नहीं फेंकते तो आप कहीं और जाकर के भी वो नहीं करें। तो दोस्तों फायद जी ने जो कहा कि छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, अपने लेवल पे छोटा सा कुछ शुरू करें। किफायत जी, आपने जब बताया कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ एक टीम है, आपके दोस्त हैं और भी कई लोग हैं जो आपको मदद करते हैं इस तरीके की चीजों को करने में, तो वो कौन है, आपके जैसे ही हम उम्र लोग हैं या कुछ और भी लोग हैं उसमें?
1: देखिए, पहले तो मैं उनके बारे में ये बताऊं, वो इसमें सिर्फ मेरा साथ नहीं देते हैं, वो इसी चीज में है, वही है जिनकी वजह से सब कुछ हम कर पाते हैं, मैं नहीं, बिकॉज ये जो चीज है ये हम कर रहे हैं, इसमें किफायतुल्लाह किफायत कुछ भी नहीं कर रहा है, हम ये वाली चीजें सारी की सारी एज ए टीम कर रहे हैं। इसमें मेरे पहले कुछ हम उम्र साथी भी है, मेरे दोस्त भी है जो मेरे ही साथ मेरे ही डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं खास तौर पर भी नाम लेना चाहूँ, एक लड़की का नाम है महक नबी, तो उनका बहुत इस चीज में साथ रहा, एक राशरफ है उनका साथ रहा, शाहिद एक था उनका साथ रहा, खास खास लोग और कुछ स्कॉलर्स थे यूनिवर्सिटी के, जिन स्कॉलर्स ने देखा कि हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं तो उनने हमारे साथ कांटेक्ट किया, बोला हम भी इस काम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स सोशियोलॉजी से थे, कुछ जर्नलिज्म से थे, जैसे डॉक्टर अजहर, डॉक्टर शमीम, डॉक्टर तौसी फिजिक्स से, मतलब हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक फील्ड से कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ा, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूट किया। इवन जो कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए वो उनके बगैर शायद ही हम सोच पाते या ले पाते, और स्पेशली जो इन स्कॉलर्स की गाइडेंस इस चीज में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी का एक वो फैब्रिक होता है, जो कल्चरल सेंसिटिविटी होती है, उसको ध्यान में रखे हुए हमें कुछ काम करने होते हैं सोसाइटी में, तो उस चीज का नजरिया, वो चीज सिखाई गई उनकी वजह से, जिनकी वजह से हमने थोड़ा सा इस चीज को इम्प्रूव किया और इस चीज को बेहतर तरीके से किया।
0: तो चाहे किताबें बांटना हो या किसी के घर तक राशन पहुंचाना हो या दवाइयां पहुंचानी, जब भी कोई व्यक्ति कोई मुहिम शुरू करता है और उसके साथ एक टीम खड़ी होती है तो वो करना आसान होता ही है, लेकिन रास्ते में कुछ मुश्किलें ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आपके रास्ते में कौन सी मुश्किलें आएगी?
1: मुश्किलें तो बहुत आई।

0: आई है और आएंगी, बिकॉज वो कहते हैं ना, लाइफ इजंट स्मूथ सेलिंग. ठीक है, चैलेंजेस विल कम योर वे, बट उन चैलेंजेस के लिए वो इंसान को रेजिलियंट और अडेप्टिव बनना ही पड़ता है, और उनके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस देखने ही पड़ते हैं. जब हम इनिशिएटिव्स लेते थे, सबसे बड़ी चीज जो होती थी कोई चीज करने के लिए, अगर आप कर रहे हो बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए वॉलंटियर, पहली चीज अगर आपने सोचा मैं 100 लोगों तक राशन किट्स पहुंचाऊंगा, और एक राशन किट जो है वो 1500 रुपए का आता है, तो पहले ये सोचना है मैं स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए कहां से लाऊंगा. सो इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज. ठीक है, बट वो थोड़ी इमेज क्रिएट की हुई थी हमने कि अभी हम इस फील्ड में काम कर रहे थे. जब हमने वो वाला इनिशिएटिव लिया, हमने फूड किट्स पहुंचाने हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सोचा था चलो अगर हमारे पास 10,000 रुपए भी आ जाते हैं हम 10 फैमिलीज तक पहुंच जाएंगे, वो बहुत है. लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप पे शाम को बैठ के मैं लिख रहा था फंड रेजिंग के लिए, और मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला. अभी मैंने किसी दोस्त को नहीं कहा था ऐसा ऐसा है कि ऐसा हम आज ही करेंगे, तो मैंने स्टेटस डाला, मैंने बोला ट्राई करूंगा. शाम को 7 बजे के आसपास, 7:45 के आसपास मैंने स्टेटस डाला. आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह तक मेरे पास 22,000 का आसपास कुछ पैसा आया था अकाउंट में. तो मैंने बोला अभी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे. मैंने दोस्त को सारों को कॉल किया, सारे के सारे भी के ऐसा करो, सबके कम से कम 5 दोस्त है. बोला हाँ 5 तो है, ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ये चीज कर सकते. बोला हाँ कर सकते. बोला 5ों को ये जिम्मेदारी दो, अब एटलीस्ट हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं 1,000 रुपए कलेक्ट करो, जस्ट 1,000. ठीक है, सो 10 लोगों के 5 दोस्त, तो हमारे पास सिर्फ 24 घंटे में ही जितना अमाउंट हमको चाहिए था हमारे पास आ गया. तो हमने बोला अभी जितने भी हमारे पास फैमिलीज आइडेंटिफाइड है, हम इससे आगे तो नहीं जा सकते, हम इतनी फैमिलीज को अभी टाइम नहीं है कि हम और फैमिलीज आइडेंटिफाई करें, वो नेक्स्ट टाइम में होगा. तो हमने उसी दिन 48 आवर्स में ही दूसरा स्टेटस डाला, प्लीज अभी कोई हमें फिलहाल फंडिंग नहीं दीजिए, कोई भी पैसा नहीं, क्योंकि हमें जो जितना चाहिए था उतना हमें मिल गया. तो पहले तो यही था चैलेंज, ये वाला. और दूसरा चैलेंज जो कहीं ना कहीं था, वो उन फैमिलीज तक पहुंचना था जो काफी रूरल एरियाज में रह रही थी, जो वहां रह रही थी जहां हमारा पहुंचना मुश्किल हो रहा था. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे इनिशिएटिव यहां पहुंचे हैं, अभी हम काम ही उन्हीं जगहों पे कर रहे हैं. मेरा अभी, मैं खुद एक ऐसी जगह से ताल्लुक रख रहा हूं जो थोड़ी माउंटेनियस है, हिली है, मगर उतना नहीं है, टाउन से थोड़ी ही नजदीक है. अभी इन पहाड़ों में रह के, पहाड़ों में देख के मुझे ये लगा, सबसे ज्यादा अगर काम करने का स्कोप है सोशल वर्क का, वो हिली एरियाज और बॉर्डर एरियाज नहीं है. तो उन्हीं दोस्तों के साथ मिलके अभी हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, एक एनजीओ बनाएंगे जो सिर्फ बॉर्डर और हिली एरियाज में काम करे, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान और गुजरात की कुछ बॉर्डर्स तक हम कवर करेंगे. तो अभी अगर इंडिया में देखिए, सिर्फ कुछ ही चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एरिया में काम कर रही, और पर्टिकुलरली कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फुली इसी एरिया में स्पेशलाइज्ड हो. तो हम क्या चाहते हैं, हम पहाड़ों के ही हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं. हम चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पहाड़ों में ही काम करे, पहाड़ों के लोगों के ही मुश्किलात हल करे, क्योंकि इनकी थोड़ी नीड्स बाकी कम्युनिटी लोगों से थोड़ी डिफरेंट होती है. ठीक है, उन नीड्स को फुलफिल हम कैसे करें. अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, आई विल शेयर उसका फर्दर आगे. अभी तो मैं बोल रहा था ये लोग उन दूर वाले लोगों तक, अभी हम स्टेशनरी पे ज्यादा काम कर रहे हैं बच्चों की, और वो भी ऐसी कम्युनिटीज में जो बहुत दूर रहती है, ऐसे लोग जिन बच्चों का स्कूल एटलीस्ट उनसे हाई स्कूल के, एक जगह पे हम लास्ट संडे गए, उनका हाई स्कूल 15 किलोमीटर दूर था. तो बोले हमें यहां से 9 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, 9 किलोमीटर के बाद गाड़ी मिलती है जो मैं हाई स्कूल तक छोड़. तो ऐसे बच्चों की स्ट्रगल को देखकर उन्हीं की जगह पे जाके दे उनको 1 साल की स्टेशनरी किट्स प्रोवाइड करते हैं. वो स्टेशनरी किट्स के लिए भी हम सेम वे में डोनेशन जमा करते हैं, लोगों तक जाते हैं, मैसेज स्टेट्स के सोशल मीडिया से उन तक पहुंचते हैं. तो कोई 1,000 रुपए, कोई 2,000, तो कोई 500, कोई 10,000. तो कोशिश करते हैं हम, और जो 10,000 हमें मिले, हम 10,000 की जगह 12,000 बच्चे तक पहुंचाए. क्योंकि मैंने आपको बोला हमें जो स्टेशनरीज प्रोवाइड करते हैं वो हमें बहुत ही अच्छी रेट्स में स्टेशनरीज प्रोवाइड करते हैं, और उससे क्या हम बहुत ही कम पैसे में हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाते हैं. इस साल का जो हमारा टारगेट था, हमने सोचा था इस साल हम 1,000 बच्चों तक पहुंचेंगे, वो भी सारे के सारे इन्हीं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं.
1: इंशाल्लाह आप जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आपके साथ न केवल हम सब की बट उन बच्चों की भी दुआएं हैं जिन्होंने आपने ऑलरेडी मदद की हुई है. लेकिन जैसे आप बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कितना सिंपल एक्ट है, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल है. साधारण सा है लेकिन बहुत ही

0: उम्दा है, क्योंकि ये व्यक्ति को न केवल उसकी पढ़ाई में मदद करता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो देश के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वो देश को बहुत ज्यादा तरीकों से मदद कर सकता है, अपने परिवार को मदद कर सकता है। लेकिन आपकी कहानी में, पर्टिकुलरली इस सोशल वर्क की कहानी में, मुझे जो चीज समझ में आई कि चैलेंजेस चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लानिंग है और अंदर में आत्मविश्वास है और साथ में अच्छे दोस्त हैं, अच्छा टीम है, तो सब चीजें हो जाती। और कभी कभी जो ये डाउट आता है लोगों को कि भाई मैं पैसे सही जगह तो दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, जब वो आपका काम देखते हो तो उनको लगता है नहीं नहीं तो बहुत सही जगह है, तो हम और भी दे सकते हैं। और इस तरीके से सरकार वो आपका आगे बढ़ता जाता है। मुझे एक चीज ये जानकर के बहुत खुशी हुआ कि आप केवल रेगुलर तरीके से समाज सेवा करने का नहीं सोच रहे, आप उन इलाकों में जाने का कोशिश कर रहे हैं जहां तक कोई पहुंचता नहीं। और इस वजह से कहते हैं कि सेवा भी पात्र देख करके करना चाहिए, दान भी पात्र देख करके करना चाहिए। पात्र को, सही पात्र को किया हुआ दान ही सही दान होता है। और अगर दान किसी गलत पात्र के हाथ में पहुंच जाए तो वो दान जो है वो विफल हो जाता है और उस तपस्या का भी फल नहीं मिलता। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे जो भी छोटा साथी सुन रहे हैं वो भी आपको दिल से दुआएं तो दे ही रहे हैं, और भविष्य में जब भी आपका ये संगठन तैयार हो उसमें वो मदद करे, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से, जैसे भी आपको मदद कर सके जरूर मदद करे। आपकी इसी जर्नी में जब आप लोगों की सेवा कर रहे थे तो नेशनल सर्विसेज स्कीम के तहत भी आपने जो भी सेवाएं की उसकी वजह से आपको भारत सरकार ने राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया, उसका अनुभव जरा शेयर करें।
1: जैसे मैंने आपको बोला कि उसी दिन जिस दिन आया उस दिन से फिर चार पांच दिन के बाद, ये चार पांच दिन नहीं मतलब लगभग एक हफ्ते बाद ये फंक्शन होने वाला था दिल्ली में, कुछ दिन थे तो वो दिन ऐसे थे जब मतलब मेरा फोन रुकता ही नहीं था। ठीक है, चलो दोस्तों के कॉल थे, बाकी के कॉल थे, सब खुश थे इस चीज को लेकर के ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम हुआ था जब कश्मीर में कोई ऐसा कॉल आया है इस अवार्ड के लिए। आज
0: तो बहुत अच्छा लगा होगा,
1: बहुत बहुत बहुत बहुत। इवन कि मम्मी पापा का मैं बता दूं, इतनी खुशी मुझे इस चीज की नहीं हो रही है कि मुझे अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे मेडल पहनाया या जो भी दिया। खुशी इस बात की है कि मैं अपने माँ बाप को एक छोटे से गांव से, जिनमें दिल्ली को बस टीवी में देखा था, उनको मैं वहां से सिर्फ दिल्ली नहीं घुमाया, उनको मैं वहां पहुंचाया जहां पहुंचने के लिए ख्वाब होता, एक वो है राष्ट्रपति भवन के अंदर, वहां प्रेसिडेंट हाउस में अंदर वो बैठे प्रेसिडेंट मैम के सामने, उनको देखा। तो वो मेडल लेने से, वो उस अवार्ड से बढ़कर था मेरे लिए वो एक्सपीरियंस। तो मैंने, अब मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको भी बोला तुम भी साथ आ जाना, ठीक है, तो वो भी साथ आए। मैंने बोला तब तक आप क्या करोगे, चलो अभी मौका मिल रहा है मम्मी पापा को यहाँ आने का, इनको दिल्ली घुमाओ, जहां ये बोले, जहां इनको जाना है इनको घुमाओ, क्या पता अभी फिर जिंदगी में इनको दोबारा ये मौका मिले दिल्ली जाने का, दिल्ली घूमने का, बाहर को देखने का। ये जो एक कुछ दिन है इनके यहाँ, ये इनके जिंदगी के खूबसूरत दिन होने चाहिए। तो फिर जब वहां थे हम, तो मुझे जल्दी ही वापस आना पड़ा। मुझे घर से कॉल आ रहा था, गांव वालों से कॉल आ रहा था कि आप घर आ जाओ, घर कब आ रहे हो। ठीक है, तो मैंने सोचा था अपनी जगह पे अभी ये हो गया, अवार्ड मिल गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए एडवर्टीजमेंट बाकी चीजें, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं शाम को, हम मेन सड़क से थोड़ा अंदर रहते हैं ऊपर, हमारी गाड़ी जब वहां पहुंची तो पटाखे फूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ ईद पे बच्चों को बोलते पटाखे मत फोड़ो। ठीक है, उस दिन कुछ नहीं देखा, पटाखे फूट रहे हैं, मैं गाड़ी से उतरा, लोग लिटरली सारे के सारे रात के 9 बजे सारे के सारे लाइन में बैठ के वेट कर रहे, मालाएं हाथों में ली, मिठाई फेंक रहे थे, चॉकलेट्स फेंक रहे थे, उतनी इज्जत आप पूछे मत। मतलब रात के 11-12 बजे तक हमारे घर पे जैसे शादी हो रही थी, इतनी खुशी। गांव वाले बहुत खुश थे, रिश्तेदार बहुत खुश थे कि हमारे गांव से भी, हमारे इस मैम से भी कोई लड़का वहां पहुंचा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक ये चीज हो गई इस अवार्ड की वजह से, इससे पहले जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पे जाते थे उतना हमको रेस्पॉन्स नहीं मिलता था, वहां से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता था।
0: अभी बढ़ गए जी,
1: हाँ एग्जैक्टली, वो चीज हो गई और ज्यादा साथी और हमारे साथ जुड़ने लगे, अभी बोल रहे हाँ काम ये सही से कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। अभी वही वजह बनी, अभी हम इनिशिएटिव्स थोड़े बड़े बड़े लेने लगे।
0: एक्चुअली आपकी खुशी में दूसरों की खुशी और दूसरों की खुशी में आपकी खुशी।

0: उनके साथ मिलने का अनुभव कैसा था?
1: अभी तो मैं राष्ट्रपति जी से उससे पहले भी एक बार मिल चुका था, राष्ट्रपति भवन में ही, तो वो दूसरी बार था, लेकिन उस बार उनके साथ बात करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार उनके साथ थोड़ा बात करने का भी मौका मिला, वो बहुत अच्छा था। उनका बात करने का शांत सा अंदाज बहुत जबरदस्त है, जो भी बोलती है वो सीधा जैसे दिल पे असर कर जाता है। उनका वो बोलना कि अभी आप जो कर रहे थे, अभी आपकी कंधों पे जिम्मेदारियां डबल हो गई, आप ये मत सोचिए कि आपको अभी अवार्ड मिल गया, अभी ये खुशियां वो है, ये ऐसा अभी है कि आपके कंधों पे जिम्मेदारियां डबल हो गई, अभी आपने अपने साथ साथ एक बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, और जो आप काम कर रहे हैं और ये आपको एक बड़े लेवल तक लेके जाना है, और वही चीज सेम मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। और मैं ये बताऊँ, कहते हैं ना कि डू गुड फॉर अदर्स इट विल कम बैक टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वे, सो वही कोशिश कर रहे हैं हम, और वही चीजें हमारे साथ रियलिटी में हो रही है। सिर्फ उस पे नहीं, आप पे भी, किसी को जो हम कुछ कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअली उस पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते हैं, हम वो अपने ही लिए अच्छा, अपने ही लिए बेहतर, अपने कौम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा कर रहे हो। तो लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को लिमिट ना करें, मैं क्या ही कर सकता हूँ।
0: बहुत सुंदर कहा आपने, और ये मैं समझता हूँ आज जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनको भी ये दिल तक जाएगा, और वो भी इस चीज को जरूर अपने जीवन में धारण करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपकी किस्मत में आपको केवल कश्मीर ही नहीं, कश्मीर से आके जम्मू, और जम्मू ही नहीं, जम्मू से आके कितने ही भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण कराया है। बहुत वैरायटी थी, बहुत विविधता थी, बहुत डिफरेंसेस थे। कौन सी एक चीज आपने ऐसी देखी जो हर स्टेट में, हर राज्य में, हर दिशा में एक ही लगा आपको?
1: वो अगर मैं चीज बोलूं, वो लोगों का प्यार है, वो मोहब्बत है, वो चीज है जो हर जगह पे आपको सेम मिलेगी। वो हम सोचते हैं हम कश्मीर में हैं, कश्मीर में डर नहीं है, अपने सब है, वो है, ये है, ये है, कुछ हो जाएगा अपने लोग देख लेंगे। लेकिन मैं जहां भी गया, आपका आप आईना है, आप जो वहां जैसे जाएंगे, जैसा है, आपको वहां से वही मिल जाता है। लोग जो वहां है वो आप ही का आईना है। मैं जहां गया, जहां भी इंडिया में जो प्यार मोहब्बत मिला ना, मैं उसको कभी नकार नहीं सकता और उसकी कभी भरपाई नहीं कर सकता हर जगह पे। इवन मैं लास्ट टाइम एक जागृति यात्रा एक होती है, वो कुछ स्टेट्स में घूम के होती है, पूरे इंडिया का सर्कल बनाती है, वो उसमें गया। आप यकीन नहीं माने, इतनी इज्जत, मतलब मैं कभी फ्री ही नहीं होता था। मैं सीट पे बैठा हुआ होता था, मेरी सीट पे एटलीस्ट 4-5 बंदे होते ही होते हैं, कैसा है कश्मीर, कैसे है कश्मीर के लोग, आप कैसे हो, वो कैसे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अच्छे से हो, आप ये हो। तो वो चीज लोग हर जगह पे सेम है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, हमने जो लेंसेज पहन रखे है ना, अगर वो न्यूट्रल है ना तो हमें सब अच्छा दिखेगा। अगर हमने लेंथ उल्टा सीधा, उल्टे सी ऊपर नीचे वाले नंबर का पहन लिया ना, तो हमें सब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, फिर हम ये बोलेंगे वो अच्छे नहीं है, हमने चश्मा गलत पहना, तो वो चीज होती है।
0: और भारत को आपके हिसाब से यशस्वी कौन सी बात बनाती है, महान कौन सी चीज बनाती है?
1: हाँ, मेरे ख्याल से अगर वैसी कोई चीज है, दैट इज जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बिकॉज आवर कंट्री थ्राइव्स ऑन दिस रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। तो वो चीज है जो इंडिया को हर कंट्री से, दुनिया की हर चीज से अलग बनाती है, और जो उस डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है वो इस भारत को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाती है। और हमें चाहिए कि इस चीज को हम सेलिब्रेट करें, हम इस चीज से सीखें, और हम हमेशा यूनिटी से खड़े रहे। हमें चाहिए कि हम उन जो गैप्स है उनको खत्म करें, उनको जो स्टीरियोटाइप्स है उन स्टीरियोटाइप्स को खत्म करें, और एक डेवलपमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को तरजीह दे दे, ठीक है। बिकॉज हमारी ताकत, हमारी कुवत, हमारी स्ट्रेंथ हमारी कलेक्टिव रेजिलियंस में ही है, और जब तक हम एक साथ है तभी हमारा रेनबो चमकेगा, तभी लोग उसको देखेंगे, तभी लोग उसका इंतजार करेंगे।
0: और मैं समझता हूँ आपके इतने सुंदर गुड विश को ऊपर वाला सुन रहा है, और वो जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो हर सही चीज को पूरा करने के लिए जरूर जिम्मेवार है। तो इसलिए हम भी ये सोचेंगे कि आपके भी जीवन में जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो शुभकामनाएं हैं, जो अच्छी कामनाएं, जो प्योर डिजायर्स हैं, वो जरूर ऊपर वाला खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी हम कहें उनको, वो शक्ति जरूर आपके साथ रहे, और आपको

0: में बहुत बहुत आगे बढ़ाए और न केवल आपको आगे बढ़ाए लेकिन आप जिन जिन तक पहुंचते हैं को भी आगे बढ़ाए। एक आखिरी राउंड हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड का जिसमें आपको जवाब एक एक शब्द में देना है। आई होप यू आर रेडी फॉर इट।
1: आई ट्राई टू।
0: बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है कि कौम क्या है, देश क्या है?
1: कौम क्या है, देश क्या है? मैं ये बोलूंगा कौम देश एक घर है। इस घर के जो सदस्य है, जो बाकी है, जितने प्यार से रहेंगे घर उतना खिलता और उभरता रहेगा। एक बार बिखर गए तो हर ईंट घर की उपज जाए।
0: बहुत सुंदर। सेवा क्या है?
1: सेवा अपने आप को इस घर की हर एक ईंट को बनाने में लगा देते।
0: सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है?
1: हैप्पीनेस जब इस घर की सारी ईंटें एक साथ हो बने हुए हो और इस घर के सारे सदस्य एक साथ मिले हुए, उस यूनिटी को देख के, उस प्यार को देख के, उस खुशी को देख के, वो सुख है।
0: अमन क्या है?
1: अमन जब वही इसी घर के वही लोग प्यार मोहब्बत यकजहती के साथ रहे, वो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी बनी रहे, वही अमन वही प्यार है और इसके लोग खुशी खुशी हर एक चीज एक दूसरे के लिए करने के लिए तैयार हो, चाहे वो सेक्रीफाइस करना हो या कोई चीज करने की हो उसके लिए तैयार हो, वो अमन है, वही पीस है।
0: कर्म क्या है?
1: कर्म जो भी इंसान इस घर को बनाने के लिए, इस देश को, इस कंट्री को बनाने के लिए, इवन कि सिर्फ इसको नहीं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य करता है, जो भी काम करता है, वही कर्म है।
0: जो भी चीज हम बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, अपने और दूसरों की बेहतरीन स्थिति, उनकी उन्नति के लिए जो भी कर रहे हैं, वो कर्म। बहुत सुंदर। बांडीपुरा आपके लिए क्या है?
1: बांडीपुरा मेरे लिए ऐसी जगह है जिस जगह पे मैं पैदा हुआ हूँ और जिस जगह की मैंने हर एक चीज को अच्छे से देखा है, बारीकी से देखा है, यहाँ की जो अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो और उन चीजों को सही करने के लिए ही मैं लगा हुआ हूँ। मैं एक और चीज बताऊं आपको, यहाँ पे जो बांडीपुरा है, बांडीपुरा तीन चीजों के लिए फेमस है, इसको तीन चीजों की वजह से जाना जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है इल्म, अदब और आब। इल्म है एजुकेशन, नॉलेज, और अदब है गुड बिहेवियर। ठीक है, यहाँ के लोगों का ये माना जाता है कि इनका बिहेवियर, इनका तौर तरीका बहुत अच्छा होता है। और तीसरी चीज है आब। आब कश्मीरी में कहते हैं पानी को, उस पानी को जो इंसान पीता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बांडीपुरा में एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वलूर लेक। तो अभी आप ये तीन चीजें, इल्म, अदब, आप ट्रिपल ए से इसको जाना जाता
0: है। बहुत सुंदर। हम कहेंगे चार चीजों से जाना जाता है, किफायतुल्लाह भी एक नंबर से। बिल्कुल जाना जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, भारत क्या है?
1: भारत क्या है? भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसा जिसे कहते रूह है, जो मैंने घर बताया, कौम देश को बताया, जिसने इस सब को जोड़े रखा है, जो इसमें वो सीमेंट की तरह काम कर, मेरे भारत वो है जिसने इस सब को जोड़ रखा है।
0: किफायतुल्लाह कौन है?
1: किफायतुल्लाह एक साधारण सा इंसान है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा है और वो मिल भी रही है।
0: बहुत खूब। सो किफायतुल्लाह मलिक जी से हम बात कर रहे थे श्रोता साथियों, और आपने अभी तक सुना एक ऐसे नौजवान भारतीय युवा की कहानी जिसने न केवल अपने जीवन को लेकिन अपने जीवन को जीते हुए कई आसपास के लोगों को जीना सिखाया है और साथ ही दूसरों के जीवन को जीवन व्यतीत करने में उनको मदद किया है। आज भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किफायतुल्लाह मलिक जी कश्मीर के बांदीपुरा गाँव से जुड़े हुए थे हमारे साथ रेडियो मधुबन में, आप सबको अपने जीवन का इतना सुंदर सुंदर गहरा गहरा अनुभव सुनाने के लिए। मैं चाहूंगा किफायतुल्लाह जी हमसे छुट्टी लेने के पहले हमें ये वायदा जरूर करें कि दोबारा वो हमसे जरूर मिलेंगे, हम सबको अपने अनुभवों के साथ साझा करेंगे और भविष्य में जब उनकी संस्था तैयार हो जाए तब वो जरूर हम तक उसके इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे ताकि आप भी उनसे जुड़ सकें। किफायत जी, अगर कोई व्यक्ति कश्मीर पहुंचे और आपको ढूंढते हुए पहुंचे तो कहां पाए जाएंगे आप?
1: कश्मीर में तो अगर कोई मुझसे फिर मिलना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मुझे अपने लिए कुछ दिन के लिए टूर गाइड अपना बनाना चाहता है, तो मेरा तो सोशल मीडिया किफायतुल्लाह मलिक देंगे मैं ही मिलूंगा, KIFAYATULLAH MALIK। जो बंदा मिलेगा वो मैं ही मिलूंगा।
0: तो दोस्तों सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम,
1: यूट्यूब, हर जगह से।
0: अच्छा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आप किफायतुल्लाह मलिक नाम से अगर आप किसी को ढूंढते हैं तो आपको हमारे किफायतुल्लाह मलिक जी मिल जाएंगे। और आप अगर कश्मीर जा रहे हैं तो अपने नजरिए से नहीं

0: के नजरिए से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी जगह को अगर जानना है तो उनके लोगों के द्वारा ही जानना बेटर होता है। इसलिए अगर आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर के आम को, कश्मीर में रह रहे लोगों को मौका दें अपने कश्मीर के बारे में बताने के लिए। अपना कश्मीर माना उनका नहीं, मेरा भी, आपका भी और हम सबका कश्मीर। तो हम किफायत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपका भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो और दोबारा आप रेडियो मधुबन को अपना समय जरूर दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये चीज मौका दिया कि मैंने अपनी जो बात है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई। बस व्हाट आई वांट टू शेयर नाउ कि आई वांट टू शेयर अ मैसेज टू यूथ फॉर कंट्री आपके माध्यम से, दैट रिमेम्बर योर यूथ, दैट यू होल्ड द ब्रश टू पेंट अ ब्राइटर कैनवस फॉर अवर नेशन। योर एनर्जी, आइडियलिज्म एंड डिटर्मिनेशन कैन रीशेप अवर डेस्टिनी। सो गो फोर्थ, इग्नाइट द फ्लेम्स ऑफ प्रोग्रेस and leave an indelible mark on our history. Best of luck, aage badhte rahe, ladte rahe. Future bahut pyara hai, bahut sundar.
0: Thank you so much Kifayat ji. Hamare sabhi saathiyon ke liye, main samajhta na keval naujawanon ke liye, visheshkar naujawanon ke liye, lekin sabhi saathiyon ke liye, bahut sundar ek message diya ki aap apne jeevan ke pratyek karma se desh ke canvas ko itne khoobsurat rangon se rang de ki dekhne walon ki nazrein chauk jaye. और मैं ये कहना चाहूंगा किफायत जी, आपका जीवन भी इन्हीं खूबसूरत रंगों से रंग जाए। आप दोबारा हमारे साथ जरूर जुड़े, ये हम उम्मीद करेंगे। दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे हमारी चर्चा किफायतुल्लाह मलिक जी के साथ। किफायतुल्लाह मलिक कश्मीर के बांदीपुरा गांव से हैं। वो भारत के एक ऐसे होनहार युवा हैं जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त है उनके समाज सेवा के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: पावसाचे थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी ये ना, ये ना।
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे, बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: से और आगोश में नन्हे को लिए।
1: Will you shut up?
0: La la la la. La la la la.

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप

0: रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है आत्मा की यात्रा, बाहरी सफलता से भीतर की शांति तक। हम सब जीवन में सफलता की ओर दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक। हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारे लक्ष्य सब कुछ बाहरी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। हम ऊंचा पद चाहते हैं, बड़ा घर, अधिक धन, समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या केवल यही सफलता का मापदंड है? क्या बाहरी उपलब्धियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? जीवन की यह दौड़ हमें भले ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, पर भीतर कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। जब रात को सब सो जाते हैं और हम अपने आप से मिलते हैं, तो यह प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में शांत हूं? यहीं से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, बाहरी सफलता से भीतर की शांति की ओर। आत्मा की यात्रा कोई भौतिक यात्रा नहीं है। यह ना तो किसी मार्ग पर चलकर पूरी होती है, ना ही किसी साधन से। यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ने की है। जब हम अपने मन की हलचल को देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों, इच्छाओं और भय को समझना शुरू करते हैं, तभी हम आत्मा के मार्ग पर पहला कदम रखते हैं। बाहरी सफलता हमें गर्व देती है, लेकिन भीतर की शांति हमें गरिमा देती है। एक व्यक्ति जिसने बाहरी सफलता पाई है पर मन अशांत है, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जबकि जिसने भीतर की शांति पाई है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सफलता मिले या असफलता। इस यात्रा में सबसे पहला पड़ाव है स्वयं की पहचान। हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर या नाम नहीं है। हमारे भीतर एक चेतना है जो साक्षी है, जो देखती है, महसूस करती है, परंतु अस्थिर नहीं होती। जब हम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को पहचान लेते हैं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। दूसरा पड़ाव है वैराग्य और संतुलन। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम संसार में रहकर भी उसके मोह में ना फंसे, कार्य करें, लक्ष्य बनाएं, पर अपने भीतर का संतुलन बनाए रखें। तीसरा पड़ाव है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। प्रिय मित्रों, बाहरी सफलता हमें सम्मान दिलाती है, पर भीतर की शांति हमें सच्चा सुख देती है। जब यह दोनों मिलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए सफलता की दौड़ में भागे अवश्य, लेकिन अपने भीतर की आवाज को न भूलें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। जो भीतर शांत है, वही वास्तव में सफल है। धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुरीरी आवाज 107.8 एफएम पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
2: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
1: थैंक यू सो मच।

0: एक्सेप्टेंस के बाद पर मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून.
1: पिछली बार जो लाइन थी जो आपने सुनाई वो थी एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. एक्सेप्ट एज इफ यू हैव चोजन इट एंड इफ यू डू दैट देन यू विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ. मतलब परिस्थिति को पहले एक्सेप्ट करें फिर एक्ट करें और इतना प्यार से एक्सेप्ट करें जैसे कि आपने खुद वैसा ही चाहा था. दैट यू हैड चोजन इट एंड इफ यू डू दैट यू विल क्रिएट मिरेकल्स. आज ये लाइन कहती है एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून. कि सपोज जीवन में कोई मिसफॉर्च्यून बड़ी बात आई है हमें उसको क्रॉस तो करना ही है और हम सब करते हैं फेस करना ही है. उस चैलेंज के पार हमें जाना ही है. वो चैलेंज को क्रॉस करना भी एक जर्नी होती है. वो चैलेंज को क्रॉस करने में कभी कुछ घंटे कभी कुछ दिन कभी कुछ साल लगते हैं. कभी कभी वो चैलेंज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है. देर आर सम सिचुएशन विच विल नेवर गेट सॉल्व्ड, राइट. सपोज मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं हो सकता. सपोज मुझे कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए या मैं पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ हुई हूं वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता. कभी मेरा रिश्ता कोई टूट जाए जो अब कभी नहीं जुड़ सकता. कोई मुझसे अलग हो जाए
0: कोई मर जाए
1: हाँ तो वापस कभी नहीं आ सकता. सो देर आर लॉट ऑफ सिचुएशन इन लाइफ जिनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं है आगे. उसका कोई ये नहीं हम वेटिंग पीरियड नहीं है कि इसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी. कुछ ऐसी भी सिचुएशन है बाकी मेजोरिटी सिचुएशन आज नहीं तो कल ठीक हो जानी है. लेकिन पीरियड कई बार लंबा चल सकता है बीच में. बट इट सेज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मिसफॉर्च्यून. मीन्स जो बात आई है हमारे जीवन में मिसफॉर्च्यून जिसको कहा मतलब कुछ हादसा कोई ट्रेजेडी कोई बड़ी बात वो मिसफॉर्च्यून हमारे जीवन पर कुछ असर डालेगी. वो तो पड़ेगा ही. कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में. उस परिवर्तन को फेस करने के लिए उस परिवर्तन में स्मूथली क्रॉस करने के लिए फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है. क्योंकि ज्यादातर जब भी कोई बात आती है तो हमारा मन प्रश्नों में चला जाता है.
0: क्यों
1: क्वेश्चंस
0: किस लिए कैसे हुआ
1: किसकी वजह से हुआ
0: ऐसा मैंने क्या कर दिया
1: क्वेश्चन
0: right. को क्यों नहीं हुआ मुझे क्यों हुआ
1: क्वेश्चंस जिसके लिए परमात्मा हमें कहते प्रश्न चित्त. चित्त प्रश्नों से भर जाता है. जब चित्त प्रश्नों से भर जाएगा तो चित्त की स्थिति मतलब मन की स्थिति प्रसन्नचित नहीं रहती. यस वेरी ट्रू. लेकिन उसके अंदर की वो जो स्टिलनेस है जहां हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखने वाला है वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ हलचल हो रही है. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. हर बात का जो मन पर असर पड़ता है फिर उसका शरीर पर भी असर पड़ता है. आज ज्यादातर क्या होता है बात आती है बात एक होती है एक बात आती है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी के जीवन में एक बीमारी आती है. अभी रिसेंटली आई मेट समबडी जिनकी एक बीमारी छोटी थी लेकिन उसका इलाज नहीं पता चल रहा था. थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ प्रोसेस लेकिन वो प्रोसेस में क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा था तो वो इतने हताश हो गए कि उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया. तो हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम को हम नहीं स्टेबिलिटी से अगर क्रॉस कर पाए तो दूसरी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं. प्रॉब्लम एक बीमारी थी वो एक अलग चीज थी. इलाज नहीं मिल रहा था तो आप यहां से वहां इधर उधर पर उसमें जो डर क्रिएट हो गया कि ये मुझे क्या हो गया

0: क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका कभी कोई इलाज नहीं होगा? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? ये जो मन इन सब चीजों में चला गया, डर में चला गया, दर्द में चला गया, भय में चला गया, इनसिक्योरिटी में चला गया, तो उस मन को डिप्रेशन हो गया। तो एक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम। कई बार किसी के बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आता है, कई बार किसी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ता है कि किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम एक थी लेकिन उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस नहीं कर पाए तो और प्रॉब्लम साथ में क्रिएट होती है। कई बार जो आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी जीवन में क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर, कि वो कैसे चलेंगे आगे, ये बनेंगे, नहीं बन पाते। वो जो सोचा था कि स्क्रिप्ट ऐसी चलेगी जीवन की, वो नहीं हो पाता। जो चाहा था वो नहीं मिलता, तो वो अपने आप को भी कुछ कर लेते हैं या हताश हो जाते हैं। तो एक परिस्थिति का इम्पैक्ट एक नहीं रह रहा आज, एक परिस्थिति का इम्पैक्ट और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फेस दैट मिसफॉर्च्यून। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ओवरऑल ही हमारे मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पे चल रही है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, जिसमें हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ये रोज का गुस्सा, ये सब दर्द करके करके वी आर नॉट अवेयर के हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं।
1: लाइक दे कॉल जीरो टॉलरेंस।
0: हाँ, जीरो टॉलरेंस, तो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं ना। अब बॉर्डर लाइन की स्थिति कई सालों तक चल सकती है एंड वी विल से इट्स फाइन, आई एम फाइन, माई लाइफ इज ओके, क्योंकि हमने ये बॉर्डर लाइन स्थिति को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज जो हमें बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती है, जैसे कुछ दिन पहले आपने कहा 35-40 ईयर ओल्ड पर्सन, सीईओ ऑफ अ कंपनी, जो उनके बारे में अखबार में भी आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, वेजिटेरियन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड द पर्सन लीव्स।
1: पहले महाराष्ट्र, फिर ऑल इंडिया दिया, ऑल इंडिया देकर सिंगापुर ऐड किया, फिर ऑल एशिया ऐड बना दिया, तो इतना उनके ऊपर।
0: लेकिन तो वो जीवन में क्या हो रहा था, अचीवमेंट्स वर वेरी गुड, लेकिन मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पर आ रही थी, बॉर्डर लाइन पे आ रही थी। तो कोई परिस्थिति आई होगी, कोई बात आई होगी, चाहे वो बिजनेस में होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होगी, जिसका प्रेशर फिर वो मन नहीं ले पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे वैसे ही अपने आप को बहुत संभाल के चल रहा है धीरे धीरे।
1: 99 हथौड़े मारे,
0: हाँ, तो यस, तो दिस वी हैव टू टेक केयर इज वन, कि हम पहले तो चेक करें कि क्या हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं या हम स्टेबल हैं बातों को फेस करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट ये कि कोई अगर बात आ जाती है जीवन में, उस बात को फेस करें, उस बात से इतना ना प्रभावित हो जाए या उस पर इतना इफेक्ट ना पड़ जाए अपने ऊपर कि उस बात का कॉन्सिक्वेंस और बातें क्रिएट होने लगे। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो पावरफुल, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून। अगर आपको बात को फेस करना है मतलब इट्स ओके, आई है ना, हम इसको क्रॉस करेंगे। ये थॉट क्रिएट करने के लिए भी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल।
1: यूजुअली जो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और नहीं करते, उसको अवॉइड करते, फेस नहीं करते, हम भाग जाते हैं, इवेड करते हैं,
0: मोस्टली हम उस प्रॉब्लम के प्रश्नों में ही फंसे रह जाते हैं।
1: नहीं, बट उस चीज को फेस भी तो नहीं करना चाहते ना।
0: फेस तो करना ही पड़ेगा ना, अगर कोई बात आ गई है।
1: एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ता
0: हूँ।
1: एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून।
0: मतलब बात जो आई है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, राइट? सपोज मुझे कोई बीमारी हो जाती है आज, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मेरे जीवन में आने वाले हैं, मुझे उसको क्रॉस करना है। जस्ट द अदर डे आई मेट समबडी इन द हॉस्पिटल, जस्ट एक दो घंटा पहले, वो यंग था, 35-40 ईयर्स का। उस भाई को पता चला कि उसको सेकेंड स्टेज कैंसर है, मेट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली। एंड तो उनकी वाइफ ने एकदम से कहा कि आप इनसे बात करो ना एक मिनट। तो वो भाई कहता है

0: नहीं इलाज कराऊंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसका इलाज। मतलब इलाज क्यों नहीं करना है? कहते ये नहीं हो सकता है मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई एज है क्या? मतलब माइंड उस सिचुएशन को, उस बात को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो आगे चलना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करना, ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ही उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बीच का हर्डल बन जाता है।
1: सिस्टर, जब मैं एक फिल्म कर रहा था लावारिस 1980s में, तो उसमें इस कैरेक्टर के दोनों हाथ कट जाते हैं और ये बिल्कुल पैसे नहीं है इसके पास, तो मैं सोचा था इसको कैसे प्रिपेयर करूं। तो प्रिपेरेशन के लिए मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला क्या होता है जब इंसान का हाथ कट जाता है, एक नहीं दोनों कट गए, तो मतलब खाएगा कैसे, खाना बनाएगा कैसे, कपड़े कैसे मतलब पहनेगा, और वो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएगा, ऑल दैट। तो यू नो फर्स्ट लाइन ही सेड द डॉक्टर, ही सेड कि यू विल नॉट एक्सेप्ट कि तुम्हारे हाथ नहीं है। कोई चीज गिरी तो आप उठाने जाओगे, फिर बाद में देखोगे अरे मेरे पास तो हाथ नहीं है। कोई चीज आप दौड़ोगे वो चीज करने के लिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस हुआ है नहीं, एंड इट विल टेक मंथ्स टाइम।
0: एंड जैसे जैसे एक्सेप्टेंस होगा तभी जीवन स्मूथ होगी ना उस कॉन्सिक्वेंस के साथ। ये कॉन्सिक्वेंस हुआ ना कि आपकी जीवन बदल गई, जैसे अगर डिसेबिलिटी कि कुछ कट गया हाथ, इवन लोग ना व्हेन समवन लीव्स द बॉडी फैमिली के अंदर,
1: मेरे साथ हुआ, आई नेवर एक्सेप्टेड माय फादर्स डेथ। वो कश्मीर में कहीं हुआ और मैंने देखा ही नहीं, तो बार बार दिखता था कि आ गए आ गए, नहीं माय फादर इज नॉट डेड इसका, और सारा टाइम उनका वो ड्रीम्स में भी आता रहता था मुझे।
0: दिस इज इट, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस अपने आप में उस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम बन जाती है। एंड इसीलिए उसमें लिखा है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ओवरकम कैसे करेंगे उस मिसफॉर्च्यून को, जब तक आपने उस मिसफॉर्च्यून को, वर्ड मिसफॉर्च्यून है मतलब उस बात को, इट्स अ सिचुएशन एक्चुअली, बट विद मिसफॉर्च्यून इज बिकॉज वो मेरे लिए एक बड़ी बात आई है कोई। तो एक्सेप्ट, जीवन में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जीवन की स्क्रिप्ट जैसे हमने प्लान की थी वैसे चलेगी, होता है ना नेचुरली, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर ये कॉलेज में जाएंगे, फिर ये कोर्स करेंगे, फिर बच्चे की शादी होगी, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। मतलब आत्मा एक अपनी स्क्रिप्ट तो बना लेती है पहले से, स्क्रिप्ट के साथ बनाकर हम उसके साथ अटैच भी हो जाते हैं कि ऐसा ही होगा मेरा जीवन, यही सही है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए, और एक क्षण में स्क्रिप्ट ही बदल जाती है पूरी। तो फॉर सम टाइम द सोल इज जस्ट नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट, एंड टिल इट डजंट एक्सेप्ट इट कांट मूव अहेड, एंड दैट लैक ऑफ एक्सेप्टेंस क्रिएट्स मोर पेन समटाइम्स देन द सिचुएशन इटसेल्फ। कई बार सिचुएशन का सोल्यूशन होता है, कई बार ये तो चलो ट्रेजेडी या कोई ऐसी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक करियर सोचा था और हमने सोचा था यही बनेंगे यही बनेंगे यही बनेंगे यही बनेंगे, लेकिन हम वो नहीं बन सकते, या हमें बस दो नंबर से एडमिशन नहीं मिला, या हमने जहां ब्रेक मिलना था वहां नहीं मिला, हमें वो चीज नहीं मिलती है। लेकिन कई बार हमारे को जीवन में उससे भी अच्छी चीज मिल सकती है, ये भी तो हो सकता है कि सपोज मैंने सोचा था डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बन जाएंगे विच टर्न्स आउट टू बी बेटर फॉर मी देन बीइंग अ डॉक्टर।
1: मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, करते करते करते आर्मी में मैंने खाली एक बात बोल दी कि सब पास हो गया था, सिर्फ ये पूछा कि आपको किसने भेजा, तो मैंने बोला मेरे डैडी आर्मी में थे तो उन्होंने कहा तू भी ज्वाइन कर, इट्स नॉट योर चॉइस, ऐसा कुछ समझ लिया उन्होंने, मतलब यू फोर्स बाय योर पेरेंट्स,
0: राइट। तो
1: उन्होंने वहाँ एक पॉइंट में फेल किया था, फिर मैं एक्टर बन गया।
0: लेकिन जब ऐसे हम एक पॉइंट पे फेल होते हैं, कई बार ये फेलियर को फेस करना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं रिजेक्ट हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो यही बनना था, आई हैड टू बी दिस ओनली, मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट ऐसी ही होनी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्या बनना चाहते थे, अगर हम नहीं बन पाते या वो सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, हम अगर उस समय स्टेबल रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद हम अपनी ऐसी

0: कि आई विश आई हैड नॉट लिसन टू माय पेरेंट्स, मैं भी आर्टिस्ट बन जाती कि जो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ इट्स नॉट गुड, आई विश आई वॉज देयर.
1: राइट. एंड द सोल कैन कैरी दिस पेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अगेन फॉर वन बर्थ और फॉर मेनी मेनी बर्थ. हम हमेशा सिचुएशंस में ये चाहते हैं, या सिचुएशन जब कोई हमारे अनुसार नहीं आती तो हम कहते हैं इट शुड हैव बीन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, यू नो दैट्स हाउ आवर वोकैबुलरी गोज, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता तो. लेकिन अगर जैसा है जो आई हमारे सामने बात, अगर हम कहें ऐसा ही होना था, ये ही सही है, अब इसके साथ आगे क्या करना है, अगर वो एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं तो जो बात आई है ना सामने उसमें भी कोई ना कोई कल्याण निकल कर आ जाएगा.
0: मुश्किल है सर आज की एक्सेप्टेंस करना. कितने लोग एक्टर बनते बॉम्बे आते हैं और फेल होके चले जाते हैं, कितने सालों साल उन लोग वो लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, फिल्में देखते हैं.
1: हाँ, लेकिन उसमें नुकसान हुआ ना, उसमें आत्मा के भविष्य में कितना नुकसान हुआ.
0: नहीं, रियल लाइफ में प्रेजेंट में भी जो फिल्म आई वैसे कपड़े पहनेंगे.
1: हाँ, तो रिजेक्टेड है ना, अंदर कितनी आत्मा दुखी रहेगी,
0: बहुत दुखी,
1: असंतुष्ट रहेगी. और असंतुष्ट रहने के कारण अब करियर तो कोई और चूज करेंगे, वी विल डू समथिंग एल्स. ऐसा तो नहीं है यहाँ फेल हुए, करना तो हमें कुछ है, लेकिन असंतुष्ट होकर करेंगे, दुखी होकर करेंगे, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है उस एटीट्यूड से करेंगे, तो उस फेस को ना एंजॉय करेंगे और ना उसमें मिरेकल्स क्रिएट कर पाएंगे. और यही अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो सामने आई है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद मेरा ये नहीं होना था, ये होना था मेरा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी, स्विच ऑफ फ्रॉम दैट वन, फिनिश्ड फ्रॉम दैट वन, ये है एक्सेप्टेंस. तो
0: जो
1: फिर हम
0: जहाँ हूँ जैसे हो, आई एम सपोज टू बी हैप्पी.
1: आई एम नॉट सपोज टू बी हैप्पी, दिस इज द बेस्ट फॉर मी.
0: वॉट है जानकारी वाली बात आ गई.
1: यस, व्हाट हैज हैपेंड फॉर मी इज द बेस्ट फॉर मी.
0: अभी तक तो एक्सेप्टेंस करना ही मुश्किल था. अब आप कह रहे हैं कि जो आपके मुरली में आता है कि जो भी हुआ कल्याणकारी हुआ.
1: आप देखो, हर घर में एक गीता सार टंगा होता है. उस पे लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. टंगा हर एक के घर में हुआ है, पढ़ते भी रोज है, लेकिन फिर भी अपने जीवन की परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती है. उस लाइन का मीनिंग होगा ना कुछ, कि अगर जीवन को उस मंत्र के साथ चलेंगे कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा.
0: अच्छा, इसलिए वो लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसमें वो कह रहा था, इफ यू एक्सेप्ट कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने किया है, देन इट विल क्रिएट मिरेक्युलस
1: मिरेकल्स, बिकॉज योर माइंड एक्सेप्ट द सिचुएशन. सो योर माइंड बिकम साइलेंट, आपके मन को वो परिस्थिति सही लगने लगती है. तो आप परिस्थिति में एक विक्टिम नहीं, परिस्थिति के मास्टर बन जाते हैं.
0: यू विनिंग.
1: जैसे आपने कहा एक सेकंड करियर हमने लिया, सपोज ये बनना चाहते थे, ये नहीं बने, हम सेकंड करियर में गए. अगर हम उस सेकंड करियर में एक विक्टिम की तरह जाते हैं, बेचारा मैं, वो नहीं मिला तो अब मैं ये कर रहा हूँ, मजबूरी से कर रहा हूँ, ये विक्टिम फीलिंग है ना. करने का मन नहीं है लेकिन अब कमाना तो है इसीलिए ये कर रहा हूँ. करना तो लेकिन वो ही चाहता था, खुश मैं तब होता अगर मैं वो करता. इसमें खुशी नहीं है मेरे जीवन में लेकिन कमाना है परिवार के लिए. ये एटीट्यूड
0: फ्रस्ट्रेशन,
1: ये एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे एक तो खुश नहीं रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस सेकंड करियर में जो हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन यही अगर हम एक लाइन लेते हैं, परमात्मा हमें मुरली में कितनी पावरफुल लाइन देते हैं, ड्रामा में हर सीन, इस वर्ल्ड ड्रामा में, आपके जीवन के ड्रामा में हर सीन जो आपके लिए हो रही है वो आपके लिए कल्याणकारी है. इसको मंत्र की तरह पकड़ के हम रखते हैं और हम देखते हैं पर्सनली कि इतने सालों में वो लाइन बार बार बार बार बार बार सुन के, पहले शुरू में क्वेश्चन मार्क होता था कि कैसे होगा ऐसे, लेकिन फिर जब भी सीन्स आए हर सीन में ये अनुभव हो गया कि अगर सीन अनप्लेजेंट

0: भी थी ना उस समय, अगर हम स्टेबल रहते थोड़ी देर के बाद, विच कुड भी थोड़े दिन थोड़े साल, ये पता चलता है कि वो सीन एक्चुअली मेरे लिए कल्याणकारी थी। और जब दो चार बार ये अनुभव हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, ये पक्का हो गया है कि ड्रामा में ये सीन भी मेरे लिए कल्याणकारी ही है। एवरी सीन इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट एंड बेनिफिशियल। एक्यूरेट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू माई कर्म, तो वो एक्यूरेट है, गलत तो वो हो ही नहीं सकती, और वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। कई बार कोई सीन अगर बाह्य रूप से बेनिफिशियल नहीं लगती कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आत्मा स्टेबिलिटी से उसको क्रॉस करती हूँ तो उसमें ये कल्याण निकल कर आता है कि आई कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हमारी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति के आने की वजह से बढ़ जाती है। हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये पावर है, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये क्वालिटी है।
1: हर्डल्स के ऊपर जंप करना सिखाते हैं ना,
0: तो हर्डल जब तक आएगा नहीं तो हमारी स्किल, हमारा पावर ये बढ़ेगी कैसे। तो अगर और कोई कल्याण नहीं निकला, अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखा उस सिचुएशन में, ये कल्याण तो निश्चित है,
1: स्ट्रेंथ,
0: कि वी विल कम आउट पावरफुल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कहते नहीं, ये जीवन का अनुभव मुझे सिखा कर गया है, मुझे स्ट्रांग बना कर गया, कहते हैं ना। लेकिन स्ट्रांग बनकर कौन निकलेगा उससे बाहर? कोई व्यक्ति सिचुएशन से वीक होकर भी बाहर निकल सकता है, लेकिन स्ट्रांग होकर तब निकलेंगे उस सिचुएशन से अगर हमारा ये पक्का रहे कि ड्रामा की ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। इवन अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर मेरी कोई चीज छूट रही है, कोई अपॉर्चुनिटी छूट रही है, अगर उस समय स्थिति को अच्छा रखेंगे ना तो हमेशा ये याद रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए छूटी थी, ये चीज इसलिए छूटी थी क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा बेटर, मेरे लिए बेनिफिशियल।
1: Isn't this a thought of a loser?
0: छूट गई है, what will you do? वो चीज छूट गई है। A loser is the one who will fail after that, जब वो चीज छूट गई, and a winner is the one जो एक चीज छूटेगी तो वो दूसरी चीज के लिए रेडी है, वो रेडी है दूसरे को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है, दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, दूसरे चैलेंज को क्रॉस करने के लिए रेडी है। लेकिन लूजर तो वो जिसकी एक चीज छूटी और वो हताश होकर फिर ट्राई ही नहीं कर पाया। आज कोई बीमारी भी अगर होती है तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपकी विल पावर से आप इसको क्रॉस कर लेंगे, आप बस पॉजिटिव रहना। क्यों हर एक डॉक्टर ये कह रहा है आज सबको, आप बस पॉजिटिव रहना? क्योंकि जब बीमारी आती है तो मन पहले कहता है, हाय मेरे को क्या हो गया, मेरे को ऐसे कैसे हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका, ये सारी चीजें हमारी उस बीमारी को एग्रेवेट कर देंगी और कुछ नहीं तो हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर देंगे। एक भाई आते हैं हमारे पास सेंटर पर, उन्होंने जीवन का एक अनुभव बहुत प्यारा सुनाया। When he was at the age of 35 and दो तीन साल हुए थे उनको राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, तो उनको टर्मिनल फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोज हुआ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट वॉज, एडमिट हुए, कीमोथेरेपी चल रही है, इलाज चल रहा है। कहते मेरा माइंड स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मुझे ये क्या हुआ है, मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है, सात्विक जीवन है, मेडिटेशन मैं रोज करता हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हुआ? मतलब इट वॉज अ हाइट ऑफ अनएक्सेप्टेंस, कर ही नहीं पा रहा था। कहता है वो मेडिसिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर कर जा रहे हैं, मेरी तबीयत डे बाय डे और खराब होती जा रही है, और खराब होती जा रही है। ही सेड द डॉक्टर कुडंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है इतनी दवाई का। माय माइंड वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रीटमेंट, ओनली वो ले ही नहीं रहा था उस चीज को। तो माइंड ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता तो बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। और एक दिन वो कहते हैं मैं रात को ऐसे जागा था, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खाना नहीं खाता था, तो मुझे ऐसे ही जैसे परमात्मा का एक विजन और एक आवाज, जैसे एक टचिंग हुई, तो परमात्मा ने कहा कि ये सीन तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि इससे तुमने अपने जीवन में और लाखों के जीवन में हीलिंग करनी है। स्ट्रांग लाइक दैट टचिंग, कहते हैं।

0: that day everything changed. And उस दिन से वो ही दवाई वो ही दवाई जो कल तक असर नहीं कर रही थी, साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे, खाना अंदर नहीं जा रहा था, नेक्स्ट डे से वो ही दवाई असर करने लग गई। आज तो खैर वो आत्मा अनेक अनेक आत्माओं की वर्ल्ड ट्रैवल करके मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग में कैसे हेल्प करती है वो उसका रोल बन गया है इस जीवन के अंदर। लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कि जब तक मन क्वेश्चंस में रहेगा न मन हील होगा न शरीर हील होगा। आई हैव चोजन दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस नाउ, व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट। सॉल्यूशन पर फोकस करें तो वो कॉन्सिक्वेंस जो था उसका फर्स्ट स्टेप जो ओवरकम करना था वो हमारा हो जाता है फिर।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Most situations will have an effect on our normal functioning of life, and we will need to adapt ourselves to that change. The first step to do that is to accept the situations, which means no questions. Why me? Why not others? Who is to blame? What have I done to deserve this? A questioning mind creates fear and anxiety, which will further impact our mental health, physical health, and relationships. Acceptance silences the questioning mind. We start to see solutions and new possibilities in the stillness of the mind. Everything happening to us is accurate and beneficial. It is accurate because it is according to our karmic patterns. There will definitely be benefit in it, which will get revealed later. And even if there is no outward benefit, we have come out of the situation emotionally empowered is the inner benefit.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ

0: चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ, आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है. आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: अहो ऐकलत का?
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

भारत के अनेकों रंग हैं, अनेकों भाषाएं हैं और साथ में हैं अनेकों प्रदेश जो मिलकर निर्माण करते हैं भारत का। तो चलिए आपको ले चलते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित उस राज्य में जहां वास्को द गामा सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे और करीब से जानते हैं इस जगह के सभी पहलुओं को। चलिए चलते हैं केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित है। स्वतंत्र भारत में जब छोटी छोटी रियासतों का विलय हुआ तब ट्रावणकोर तथा कोचिन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को ट्रावणकोर कोचिन राज्य बना दिया गया, लेकिन मलबार मद्रास प्रांत के अधीन ही रहा। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ट्रावणकोर कोचिन राज्य तथा मलबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण किया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल का इतिहास अपने वाणिज्य से निकट से जुड़ा है जो हाल तक अपने मसालों के व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। भारत के स्पाइस कोस्ट के रूप में विख्यात प्राचीन केरल ने विश्व भर के पर्यटकों और व्यापारियों की मेजबानी की है, जिनमें शामिल है ग्रीक, रोमन, अरबी, चाइनीज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इनमें से लगभग सभी ने इस भूमि पर अनेक रूपों में, जिसे स्थापत्य, व्यंजन विधि, साहित्य में अपनी छाप छोड़ी।

केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। सामान्यतः कहा जाता है कि चेर स्थल और कीचक और अलम प्रदेश शब्दों के योग से केरल शब्द बना है। केरलम शब्द से ए अर्थ भी निकलता है कि वो भूभाग जो समुद्र से निकला है अथवा समुद्र और पर्वत का संगम स्थान है। केरल को प्राचीन विदेशी यायावरों ने मलबार नाम से भी पुकारा है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि केरलम यानी केरों का देश या नारियलों का देश। पौराणिक मान्यता है कि परशुराम की कुल्हाड़ी से केरल की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे। प्राचीन प्रस्तर युग के कतियब खंडहर केरल के कुछ भागों से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन खंडहरों के बाद महाप्रस्तर स्मारिकाएं आती हैं, जो केरल में मनुष्य के अधिवास की प्रामाणिक जानकारी देती है, जो अधिकतर स्मशान रूप में है। कूड़ाकल्लम यानी छतरी नुमा चट्टान, तोपीकल्लु यानी टोपी नुमा चट्टान, कल मेशा यानी पत्थर से बनी मेज, मुनियरा यानी मुनियों की खोटी, नन्नंगाड़ी एक तरह की कब्र अथवा पात्र जिसमें अस्थियां डाली जाती है, आदि विभिन्न प्रकार की महाप्रस्तरयुगीन कब्रें खोज निकाली गई है। इनका काल ईसा पूर्व 500 से ईस्वी सन 300 तक माना जाता है। अधिकतर महाप्रस्तरयुगीन स्मारिकाएं पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त, ये इस बात का प्रमाण है कि आदिकालीन अधिवास स्थान वही था। केरल में आवास केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। इसी काल में प्राचीन तमिल साहित्य निर्मित हुआ था। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक था। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक था। इस काल में भारत के अनान्य प्रदेशों से लोग केरल में आकर बसने लगे। इसी काल में वहां बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार भी हुआ था। ब्राह्मण लोग भी केरल पहुंच गए। केरल के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों की कुल मिलाकर 64 बस्तियां थीं। ईसा की पहली शताब्दी में ही ईसाई धर्म केरल में पहुंच गया था। कानाई के सेंट थॉमस के नेतृत्व में सन 345 में पश्चिम एशिया के 7 कबीलों के 400 ईसाई धर्मावलंबी केरल आकर बसे, जिनसे केरल में ईसाई धर्म प्रचार को बल मिला। जिस केरल के साथ अरबों का समुद्र मार्ग से व्यापार चल रहा था, उस केरल का इस्लाम धर्म से ईसा की 8वीं शती में ही परिचित होना और केरल द्वारा उसका स्वागत किया जाना एकदम स्वाभाविक था।

प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते थे। केरल की निजी विशेषताओं के विकास में जो तत्व सहायक हुए उनमें मुख्य है लोगों का प्रकृति प्रेम, आवास केंद्रों का विकास, उत्पादन केंद्रों का उदय और भाषा का विकास। जब क्षेत्रीय शक्तियों के हाथ में कृषि और संसाधनों का नियंत्रण आ गया तब केरल को सामाजिक परिवर्तन का सामना

करना पड़ा जो अनेक पीढ़ियां तक चला। फलस्वरूप छोटी छोटी रियासतों से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप केरल का एक नया इतिहास बना जो साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास है, भाषा और साहित्य के विकास का इतिहास है, विदेशी सेनाओं के आगमन तथा उनके दीर्घकालीन उपनिवेश बन जाने का इतिहास है, जाति पाति और शोषण का इतिहास है, शिक्षा में हुई प्रगति और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हुई तरक्की का इतिहास है, व्यापारिक प्रगति और सामाजिक नवजागरण और जनतांत्रिक संस्थाओं के आविर्भावों का भी इतिहास है। भारत में हुए किसी भी अन्य विरोध से पहले केरल के पड़ोसी राजा ने 1793 से 1805 में अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। अपने राज्य के घरेलू मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में उन्होंने दो युद्ध लड़े। 1793 से लेकर 1797 तक कोटेम प्रबंधन के सवाल पर और 1800 से 1805 तक वायनाड पर मालिकाना के मुद्दे पर उन्होंने युद्ध किया। केरल राज्य के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे केपी केशव मेनन। जब केरल प्रदेश कांग्रेस समिति बनी तो उन्हें पहला सचिव चुना गया और 1925 में वे समिति के पहले उपाध्यक्ष भी बनाए गए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए छिड़े कई आंदोलनों में भाग लिया, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार इत्यादि। राज्य की एक और वीरांगना थी श्रीमती एवी कुट्टीमालुअम्मा, जिन्होंने खादी और स्वदेशी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सामाजिक जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपने 2 महीने छोटे बच्चे के साथ सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में हिस्सा लिया और 2 साल के लिए कारावास भी गई। उन्होंने महिलाओं को लेकर कालीकट में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। केरल के एक महान व्यक्तित्व थे ई इकंडा वारियर। महात्मा गांधी से मिलना उनके लिए एक नया दृष्टांत लाया। उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी अपनी भूमिका अदा की तथा कांग्रेस के अंतर्गत कई आंदोलनों में

केरल में जन्मे एक महापुरुष थे के केलप्पन। उन्होंने एक तरफ सामाजिक सुधार के लिए काम किया तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार से भी लोहा लिया। उन्हें केरला गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और हरिजनों के उत्थान के लिए मेहनत से काम किया तथा कई हरिजन छात्रावास एवं विद्यालय स्थापित किए। भौगोलिक दृष्टि से केरल पर्वतीय क्षेत्रों, घाटियों, मध्यवर्ती मैदानों तथा समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है। केरल नदियों और तालाबों के संबंध में बहुत ही समृद्ध है। केरल में 44 नदियां बहती हैं, जिनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर और 3 पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां अपनी सहायक नदियों और उपधाराओं के साथ केरल की प्राकृतिक संपदा को बढ़ाती है। समुद्री झीलें केरल का मुख्य आकर्षण है। आर्थिक दृष्टि से भी प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी केरल राज्य के एक अंतः क्षेत्र दक्षिण भारत में माही नगर स्थित है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल का प्रमुख स्थान है। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल राज्य में अंग्रेजी भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। मलयालम भाषा की भांति अंग्रेजी भाषा भी शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। तमिल और कन्नड़ भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा कहा जाता है। मलयालम द्राविड परिवार की भाषाओं में से एक है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत है। एक मत है कि किसी आदि द्राविड भाषा से विकसित होकर मलयालम एक स्वतंत्र भाषा हुई, और दूसरा मत है कि मलयालम तमिल तथा संस्कृत से उत्पन्न भाषा है। सीखने के लिए मलयालम भाषा विश्व की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। सभी विद्वान मानते हैं कि भाषा के परिवर्तन के कारण मलयालम भाषा का उदय हुआ। तमिल और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के साथ मलयालम का बहुत ही गहन संबंध है। साहित्यिक भाषा के रूप में मलयालम भाषा का विकास 23वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ। 23वीं शताब्दी में लिखित रामचरितम को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है। कृषि की वैसे तो भारत के अधिकतम प्रदेशों में मुख्य भूमिका है, पर केरल राज्य में कृषि की विशेषता ये है कि यहाँ व्यापारिक फसलें अधिक उगाई जाती हैं। राज्य के लगभग 50% नागरिक कृषि पर निर्भर है। नारियल, रबर, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफी आदि का उत्पादन केरल में प्रमुख रूप से होता है। दूसरी फसलों में सुपारी, केला, अदरक तथा हल्दी आदि है। केरल राज्य में जायफल, दालचीनी, लौंग आदि मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं। चावल तथा टैपियोका का केरल की मुख्य खाद्य फसलें हैं। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं केरल के ऊपर एक सुंदर सा गीत।

आशा है एक गीत आपको पसंद आया होगा। केरल की संस्कृति वास्तव में भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल की संस्कृति भी एक समग्र और महानगरीय संस्कृति है जिसमें कई लोगों और जातियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केरल के लोगों के बीच समग्र और विविधतावादी सहिष्णुता और दृष्टिकोण की उदारता की भावना का उद्भव अभी है जिससे नेतृत्व संस्कृति का विकास लगातार जारी है। केरल ने हर चुनौती का माकूल जवाब देते हुए प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ ही पुरानी परंपराओं और नए मूल्यों का मानवीय तथ्यों से संलयन भी किया है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कला रूपों तक की भूमि

उनके चित्रों में दिखता है। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा गुजरात स्थित संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाए। मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोलकर उन्होंने अपने चित्रों का प्रकाशन किया था। उनके चित्र विविध विषय के हैं, किंतु उनमें पौराणिक विषयों के और राजाओं के व्यक्ति चित्रों का आधिक्य है। विदेशों में उनकी कृतियों का स्वागत हुआ, उनका सम्मान बढ़ा और पदक पुरस्कार मिले। पौराणिक वेशभूषा के सच्चे स्वरूप के अध्ययन के लिए उन्होंने देशाटन भी किया था। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है कथकली, जो मलाबार, कोचिन और ट्रावनकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। 17वीं शताब्दी में कोट्टाराकरा तंबुरान ने जिस रामनाटम का आविष्कार किया था, उसी की विकसित रूप है कथकली। ये रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला की नृत्य नामक रंग कला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत करता है। कथकली के साहित्यिक रूप को आटक कथा कहते हैं। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ आटक कथाएं गाते हैं। कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। कथा का विषय भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी कथाओं को भी विषय रूप में स्वीकृत किया गया है। दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं कथकली संगीत।

ने लोगों ने जन्म लिया, उन्हीं में से एक है खेल जगत का जाना माना नाम, भारत की बेहतरीन एथलीट पीटी उषा। पीटी उषा ने कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उनकी कुछ उपलब्धियों में से है 1990 में बीजिंग एशियाई खेलों में 3 रजत पदक, 1998 में फुकुओका की एशियाई दौड़कूद प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 रजत व 2 कांस्य पदक। भारतीय खेल को उनके अनेक तथा विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। केरल में ही जन्मे ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। कोंकण रेलवे श्रीधरन जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्हें 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। चलिए अब केरल के त्योहारों को मनाने आपको ले चलते हैं। केरल में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर त्योहार धार्मिक है जो हिंदू पुराणों से प्रेरित है। ओणम केरला का विशिष्ट त्योहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। ये त्योहार खगोल शास्त्रीय नव वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ओणम केरल के लोगों के लिए इस आशा का प्रतीक भी है कि एक स्वर्णिम युग यहाँ था तथा एक स्वर्णिम युग आने वाला भी है। इस अवसर पर लोग अपने घरों का नवीकरण करवाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं और राजा महाबली जी, जो उनकी मान्यता अनुसार एक प्राचीन और समृद्ध केरल पर राज करते थे, उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सुनते हैं ओणम के ऊपर एक सुंदर सा गीत।

केरल में नवरात्रि पर्व भी सरस्वती पूजा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है। शबरीमला के अय्यप्पा मंदिर में इसी दौरान मगर विलक भी आयोजित होता है। भगवान अय्यप्पा की पूजा करने के लिए साधक को 41 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है तथा शुद्ध भोजन स्वीकार करना होता है, तभी ये साधना सफल मानी जाती है। वल्लम कली या नौका दौड़ केरल का अपने ढंग का अनोखा आयोजन है। पुन्नमडा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो एक प्रतियोगिता है, इनको छोड़कर पुन्नमडा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, इसको छोड़कर शेष सभी नौका दौड़ उत्सवों का कोई न कोई धार्मिक महत्व है। त्रिशूर के वडक्कमनाथ मंदिर में हर वर्ष अप्रैल में पूरम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सजे धजे हाथियों की भव्य शोभा यात्रा निकलती है और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर एक और बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहार त्रिशूर पूरम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और रंगारंग त्योहार माना जाता है। क्रिसमस और ईस्टर जो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, ये भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पंबा नदी के तट पर हर वर्ष मरामन सम्मेलन होता है, जहां एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है और जहां मिलाद-ए-शरीफ, रमजान रोजे, ईद-उल-फितर का त्योहार भी मनाते हैं।

केरल घूमने के लिए एक आकर्षक स्थल है। पर्यटन गतिविधियों के लिए केरल में स्थायी और सफल वृद्धि के लिए अपेक्षित वातावरण पहले से विद्यमान है। पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक सौंदर्य, सामान्य जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण। मैत्री भाव वाले शांति प्रिय लोग हैं, जो सांस्कृतिक विविधता के प्रति बेहद सहिष्णु है और अनूठे पर्यावरण को निर्मित करने का क्षमता रखते हैं। केरल देश में सर्वप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीलें, पर्वतीय स्थल, जलप्रपात, वन्य जीवन, आयुर्वेद, वर्ष भर त्योहार तथा विविध पेड़ पौधे केरल के पर्यटकों के लिए एक अनूठा गंतव्य स्थल बनाते हैं। यहाँ गुरुवायूर आनकोटा नामक उद्यान है, जहाँ 60 से 85 हाथी है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाथी उद्यान बनाते हैं। पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थल है पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला आलपुरा, जहां का इतिहास केरल के सामुद्रिक इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आज यह अपने नौका दौड़, बैकवाटर छुट्टियों, समुद्री तटों, समुद्री उत्पादों और कॉयर उपयोग के लिए जाना जाता है। आलपुरा बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। विजया बीच पार्क की मनोरंजन सुविधाएं पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करती है। यहाँ पास में एक लाइट हाउस भी है, जो पर्यटकों को खूब लुभाता है। आलपुरा का एक अन्य आकर्षण है हाउस बोट में जल विहार करना। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाना है तो केरल से बेहतर जगह कोई भी नहीं है। यहाँ का वातावरण और सुंदर परिदृश्य देश विदेश से आने वाले हर दिल को लुभा लेते हैं।

0: चलिए अब वक्त हो चला है हम वापस आ जाए इस खूबसूरत प्रदेश की सैर से और आपसे ले अलविदा एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: परिस्थिति, शब्द में ही सारा मीनिंग है, परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है, टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है। और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी। चलिए बात करते हैं आज 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज को हम लोग इस कार्यक्रम में सुनाते हैं और आप सभी भी बड़ा ही चाव से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को। और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को सुना है उनका मैसेज आता है कि ये पुराने कलेक्शन शायद ही हम लोग इस समय में सुन पाए, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज का जो कलेक्शन है आप हमें सुनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में आप जो गाना किसने गाया, संगीत किसने दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप देते हैं तो वो और अच्छा हमें लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, ये मैसेजेस पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूं जो क्लासिकल है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग की अक्षर वाले सारे गीत 50s एंड 60s के आपको सुनाएंगे। तो की अक्षर का एक क्लासिकल गीत था जो 1965 में रिलीज हुई थी। जी हां, अनिल विश्वास साहब ने इसे संगीत से संवारा था। छोटी छोटी बातें इस एल्बम से आपको सुनाने वाला हूं मैं। और ये गाना जैसे कि ये

जी हाँ, कुछ और जमाना कहता है लेकिन हमारा दिल कुछ और कहता है। कई बार जीवन में इस तरह के कश्मकश हम सभी के बीच में आता है कि लोग कुछ और कहते हैं और हमारा दिल कुछ और कहता है। तो वही ऐसे भाव भरा ये क्लासिकल गाना है और जिसे खास मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया था और इसे खास लिखा है शैलेंद्र साहब ने, मीना कपूर ने इसे गाया है। अनिल विश्वास का बहुत ही खूबसूरत संगीत, छोटी छोटी बातों का ये खूबसूरत गाना जो 1965 में रिलीज हुई थी। तो ये निर्देशक, लेखक और निर्माता के रूप में एकमात्र फिल्म उनके घर बैनर राजवंशी प्रोडक्शन के तहत बनी थी। तो चलिए, ये भारतीय फिल्म परिवार की एक नाटकीय फिल्म है जिसे देखकर आपको अपने घर की बातें याद आती है। तो आइए अब सीधे मैं ले चलता हूं कार्यक्रम की शुरुआत में ये क्लासिकल गीत आपके लिए खास। और इस फिल्म के कलाकार थे मोतीलाल और नादिया और इस फिल्म को उस जमाने में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर, मैं हूं आपका हम सफर। जी हां, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ले चलता हूं एक और फिल्म की तरफ जो 1958 में रिलीज हुई थी। एक फिल्म जिसका नाम था लाजवंती। ये

फिल्म ऐसी बनी थी जो एक महिला किरदार पर बनी थी। जी हाँ, कविता नाम की एक महिला पर फिल्म बनी थी और ये बहुत ही प्यारी और कर्तव्य दक्ष पत्नी रही, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा बेवफाई का आरोप इस पर लगाया जाता है और कविता का पति उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है और उसे उसके बच्चे से भी अलग करता है। तो एक महिला पत्नी की जो रोल है इसमें बताया गया है, ये कश्मकश जो है किस तरह से चलता है वो यहां देखने को मिलता है और इस कश्मकश में एक महिला जो है कैसे अपने रोल को अदा करती है, तो ये इस लाजवंती फिल्म में बताया गया है। तो इसका ये खूबसूरत गाना है जैसे कि ये

जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मजेदार गाना है और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आइए, इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और आशा भोसले ने इसे आवाज दिया है, सचिन देव बर्मन ने इसे संगीत से संवारा है। तो चलिए इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं। नरगिस बलराज सहानी, कुमारी नाज और लीला मिश्रा पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आपको हम सुना रहे हैं। लाजवंती फिल्म के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 60s की बात करें तो 1966 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अनुपमा। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जो महिला करियर पर महिला चरित्र पर फिल्माया गया था। आप देखे होंगे कि कई बार माता जो है एक पत्नी पहली बार मां बनती है तो डिलीवरी के इस दौरान जो है एक बड़ी कशमकश होती है। कई बार डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर में ये बताते हैं कि आप बच्चे को बचाना है या मां को बचाना है, आपके ऊपर है कि आप किसे बचाना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे एक परिवार पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है ये आपको पता चलता है और ऐसे सिचुएशन को इस अनुपमा फिल्म में बताया गया है। और इसमें होता है ऐसे कि एक मां अपने बच्चे को जन्म देते ही वो चल जाती है और उनके पति मोहन जो है अपनी बेटी को देखकर खुश भी होते हैं लेकिन उसे घृणा भी करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसकी मां चली गई और हालत बदतर होते जाते हैं। और इस तरह की जो सिचुएशन है ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना है।

जी हाँ, कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा और कुछ नहीं भी कहा। तो ऐसे ही एक खूबसूरत भाव है प्यार का, दिल की बातें इसमें है। तो ये खूबसूरत गाना लिखा है कैफी आजमी ने। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में आप सुनेंगे हेमंत कुमार का संगीत के साथ 1966 का ये खूबसूरत गाना आपके नाम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। जी हाँ, ये गाना आपने सुना अनुपमा फिल्म से, जिसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, दुर्गा खोटे और देवन वर्मा। आप सभी जानते हैं देवन वर्मा एक कॉमेडी एक्टर हुआ करते थे उस जमाने के, बहुत ही पॉपुलर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए 1967 की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। बहारों के सपने, ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी उस जमाने में। और बहारों के सपने ये एक फिल्म जो है 23 जून 1967 को रिलीज हुई थी। इसके गाने बड़े खूबसूरत थे। ये गाना जैसे कि

जी हाँ, गम की शाम क्या होती है, ये इस गाने का भाव है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा है और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। राहुल देव बर्मन का खूबसूरत संगीत से सजा बहारों के सपने इस एल्बम का ये गाना अभी आपके नाम। और इस फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम नाथ और मदन पुरी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पूरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत पीछे की तरफ ले चलता हूँ, 50s एंड 60s नहीं 40s की तरफ ले चलता हूँ, 1946 की तरफ। एक फिल्म रिलीज हुई थी, अनमोल घड़ी। जी हाँ, और उस जमाने में जो है लता मंगेशकर इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उस जमाने में पॉपुलर थे नूरजहां। जी हाँ, नूरजहां की आवाज आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जैसे कि नूरजहां की आवाज में ये गाना।

नूर जहां जो है उस समय की बहुत ही पॉपुलर गायिका रही, बहुत ही फेमस गायिका रही। तो आइए, यस अनमोल गढ़ी इस एल्बम में ये स्टोरी बताया गया है बचपन के प्रेमिका लता और चंदन नाम के दो प्रेमी हैं और ये दोनों अलग होते हैं। जब लता मुंबई आती है वह उपनाम रेनू के नाम से पहचानी जाती हैं और एक गायिका बनती हैं और चंदन उसकी कविता से प्रभावित होता है और उसे मिलने की इच्छा रखता है। तो इस तरह से ये एक मिलना और बिछड़ने की कहानी है और बिछड़े प्रेमी फिर से बाद में मिल जाते हैं, ऐसी कहानी इसमें बताई गई है। तो अनमोल गढ़ी का एक खूबसूरत गीत आपको मैं सुना रहा हूं जो आपने सुना थोड़ा सा। तो आइए नूरजहां की खूबसूरत आवाज में नौशाद साहब का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अनमोल घड़ी का एक खूबसूरत गाना आपने सुना जो 1946 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, सीधे 20 साल के बाद यानी 46 के बाद 68 की तरफ मैं ले चलता हूँ, जिस समय एक फिल्म आई थी 1968 में इजाजत। जी हाँ, ये एक आदिवासी पर फिल्म आया गया था और एक आदिवासी लड़के की कहानी है। आदिवासी लड़का अपने माँ का प्रतिशोध चाहता है जिस अमीर आदमी ने उपयोग कर छोड़ दिया था। वो यही इतिहास को दोहरा पाता है जब उसका सौतेला भाई आदिवासी लड़की से प्यार करता है लेकिन शादी से इनकार करता है। तो यहाँ पर नहले को दहला जैसे को तैसा का जवाब इस फिल्म में देने की कोशिश की है। स्टोरी इस तरह का है, फिल्म का गाना है ये।

साहिर लुधियानवी साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत 1968 का, अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खबरों का सफर इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपने जो गाना सुना, क्या दिल ये ऐसे लोगों से, शायद वो गाना उस जमाने में पॉपुलर तो था ही, लेकिन आज भी एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देता है। और इस फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, तनुजा, जय ललिता और महमूद अली। जी हाँ, इस पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 60s में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जिसके गाने और फिल्म दोनों ही हिट हुए थे और जिसके हीरो थे देवानंद। जी हाँ, देवानंद का एक फिल्म, शायद आपको नाम याद आ गया होगा अगर आपने फिल्म देखी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाइड का। गाइड में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है कि अक्षर से, जैसे कि ये।

ये फिल्म एक गाइड का है, यानी जो लोग टूरिस्ट प्लेस में रहते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं उनको वहां की बातें, वहां का इतिहास सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो बिल्कुल गाइड बनकर देवानंद इस फिल्म में काम करते हैं, लेकिन आखिरी में सन्यासी बन जाते हैं और वो एक अच्छे सन्यासी बन जाते हैं। तो गाइड फिल्म में एक राजू नाम का गाइड बना हुआ है देवानंद, और उनकी ये फिल्म पूरी स्टोरी बनी हुई है। तो आपने देखा होगा तो शायद आपको पूरी फिल्म याद आ गई होगी, अगर नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिए। इस फिल्म के कलाकार हैं देवानंद, वैदा रहमन, लीला चिटनिस, किशोर और अनवर हुसैन। इस फिल्म का एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं, शैलेंद्र साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं 60s के और 50s के। तो चलिए एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। 1969 का एक फिल्म आई थी 1969 में, जिसका नाम था आराधना। आराधना फिल्म जो रिलीज हुई थी 1969 में, उसमें एक गाना था जो कि अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि ये

आनंद बख्शी साहब का लिखा और लता और किशोर दा का गाया हुआ ये गाना सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा है। चलिए इस फिल्म का ये गाना आपको सुनाते हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आराधना जो है नाम से ही पता चलता है कि किस तरह का स्टोरी इसमें होगा। अरुण वंदना ये दो कलाकार है, चुपके से शादी करते हैं और कुछ समय बाद अरुण की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। उनके बच्चे को अनाथालय भेजने के लिए वंदना को बाद में उनके परिवार वाले मजबूर करते हैं। तो ये आराधना फिल्म की कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। और इस फिल्म में कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, सुदीप कुमार और अशोक कुमार इस फिल्म के कलाकार थे। तो चलिए इसी गाने के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी तरह कुछ 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज को लेकर मैं आऊंगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्यारे प्यारे गीत सुनाएंगे। और आज का ये एपिसोड में जो के अक्षर वाले गाने थे ये आपको कैसे लगे इसके बारे में आप जरूर बताइए, अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए, हमें और खुशी मिलेगी आपके मैसेजेस को देखकर। तो चलिए सलाम नमस्ते खमा गनीसा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शक्ति बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच

0: गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक, स्टॉप,

0: सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो, और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियालिटी ऑफ आवर लाइफ टूडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: बेटा
0: यस पापा
1: बरखोरदा
0: यस डैडी
1: अपनी भाषा में बोलो
0: अरे हां सॉरी
2: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
3: नमस्ते
2: जय हिंद ओ पिताजी
3: जय हिंद
2: नमस्ते नमस्ते
0: है सबको
4: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे?

0: तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे उठकर साफ करेंगे, ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हेलो पुराना स्टंप जी।
1: हेलो मनु।
0: सॉरी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली मेरी एक नई दोस्त बनी है और उसको ब्यूटी पार्लर छोड़ के आना था, इसलिए मुझे देर हो गई।
1: ओह, ब्यूटी पार्लर, तो तुम साथ नहीं गई?
0: नहीं नहीं, एक्चुअली ना, उसका रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए वो कुछ उपाय कर रही है गोरे होने के लिए।
1: अच्छा, और गोरा होना इतना जरूरी क्यों है?
0: अरे, क्योंकि सुंदर होना किसे अच्छा नहीं लगता। फेसबुक पे लाइक्स भी तो तब ही मिलते हैं, और दादी तो कहती है सांवले रंग वाली लड़कियों की शादी भी जल्दी नहीं होती।
1: तुम्हारी जनरेशन कहती है हम मॉडर्न हैं और ख्यालात वही घिसे पिटे। सुंदर होने की काले गोरे से क्या भेंट? तुम्हारी वो नई दोस्त अपने बारे में ही हीन भावना का शिकार है। सभी रंग खूबसूरत है मनु। सोचो, वो देश जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, सबका रंग सांवला होता है, क्या वहाँ कोई सुंदर नहीं होता?
0: हाँ, वैसे बॉलीवुड में भी कोंकणा सेन, नंदिता दास जैसी अभिनेत्रियों ने इस मिथ को तोड़ा है।
1: बिल्कुल सही, बाहरी खूबसूरती को भी रंग से मत आंको और अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि खूबसूरती आती है आत्मविश्वास से। और कोई बुरा बर्ताव करे भी तो ये उसकी संकुचित मानसिकता है।
0: ओके पुराना स्तंभ जी। अच्छा, क्या अब आप मुझे ज्ञानेश्वर महाराज की कहानी सुनाएंगे?
1: जरूर सुनाऊंगा, तो सुनो। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। संत ज्ञानेश्वर के शरीर का जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं रहा।
0: अच्छा?
1: उन्होंने 21 वर्ष की उम्र तक ही जीवन यापन किया। उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। संत ज्ञानेश्वर के जीवन काल में कई कष्ट उनके सामने आए।
0: अच्छा?
1: कारण था ब्राह्मण समाज द्वारा उनके परिवार का बहिष्कार। इस बहिष्कार का कारण जानने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई।
0: कहाँ से?
1: यानी संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत की कहानी की ओर। विट्ठल पंत शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे तीर्थ यात्राएं करते, भगवान का सिमरण करने में ही सुख की अनुभूति करते थे। उन्हें वहाँ साधु सन्यासियों का संग प्राप्त होता। विट्ठल पंत एक बार तीर्थ यात्रा पूर्ण कर पुणे के पास आळंदी नामक गांव में आए। उस समय सिद्धो पंत नामक एक सदाचारी ब्राह्मण वहाँ पटवारी थे।
0: अच्छा?
1: वे विट्ठल पंत की निष्ठा और प्रभु प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह विट्ठल पंत से करवा दिया। विट्ठल पंत भक्ति रस में सदा डूबे रहते। कुछ समय में ही उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। और परिवार की पूरी जिम्मेवारी उन पर ही आ गई। विट्ठल पंत का सामाजिक क्रियाकलापों में मन नहीं लगता था और अधिकतर समय भगवान को याद करने में ही व्यतीत होता था।
0: अच्छा?
1: अब धीरे धीरे उनके अंदर संन्यास लेने की इच्छा जागृत होने लगी, किंतु पत्नी के बिना पूछे वे संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसलिए बार बार ये सवाल वे रुक्मणी के सामने रखते। रुक्मणी उनको बार बार समझाती थी। एक बार क्रोधित हो रुक्मणी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और उन्हीं क्रोध के बोलों को अनुमति मान विट्ठल पंत काशी की तरफ चल दिए। काशी जाकर उन्होंने महाराज से संन्यास की दीक्षा ली।
0: अच्छा?
1: और उन्हें ये बताया कि वे बंधन मुक्त है, अर्थात

0: विट्ठल गुरु की आज्ञा मान लौट तो गए, मगर उस समय ब्राह्मण समाज में संन्यास ग्रहण कर चुके किसी व्यक्ति को वापस आने की अनुमति नहीं थी।
1: अरे,
0: उन्हें अशुद्ध माना गया और ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार किया। विट्ठल और रुक्मणी के तीन बेटे और एक बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम था निवृत्ति, दूसरे नंबर पे थे ज्ञानदीप। बालिका का नाम था मुक्ताबाई और सबसे छोटे बेटे का नाम सोपान देव था।
1: अच्छा।
0: चारों बच्चों को भी समाज ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें कई कष्टों से गुजरना पड़ा। विट्ठल और रुक्मणी चाहते थे कि उनके बच्चों का जीवन सम्मान से गुजरे, इसलिए उन्होंने कई प्रयास किए कि बच्चों का जनेऊ संपन्न हो जाए, उन्हें ब्राह्मणों में जगह मिल जाए। उस समय जनेऊ होना ब्राह्मणों के लिए बेहद जरूरी हुआ करता था।
1: अच्छा।
0: लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी ये नहीं हो सका। विट्ठल को कई बार अपमानित और लज्जित भी होना पड़ा। बताते हैं कि पूरे परिवार ने त्र्यंबकेश्वर जाने का निर्णय लिया। तब एक अचंभित कर देने वाली घटना हुई।
1: और वो क्या?
0: जिसने निवृत्तिनाथ को ज्ञानदेव का गुरु बना दिया। चारों ही बच्चे पहले से ही ज्ञान की ओर रुचि रखने वाले और प्रभु को संपूर्ण श्रद्धा से सिमरन